सुप्रभात श्रोताओ, FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है, प्रस्तुत है आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

भक्ति रचनाओं की इस पेशकश में पहली प्रस्तुति है एक देशगान, रचना नरेंद्र समाधिया की है। आइए सुने सहगान रूप में।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में हमने सुनी संत तुलसीदास जी की भक्ति रचना। अब संत कबीरदास जी की रचना आपको सुनवाते हैं स्वर पंडित भीमसेन जोशी का।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओ, आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति स्वर विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का।

0: आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं, कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।
0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
2: प्रेम, कितना थका डाला है। वाकई मन, तू बड़ा अजीब है। कितनी बार कहा न कि ये माटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, न इससे कुछ मिलता है। यह क्यों नहीं समझता कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब आ चल उसी रास्ते पर। वास्तव में प्रेम है करना, बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करना, अभद्र व्यवहार नहीं करना। प्रेम झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से प्रसन्न नहीं होता, सच्चाई से प्रसन्न होता है। यह सब बातों पर सब में विश्वास करने की आदत डालता है, सब बातों के प्रति आशान्वित करता है, सब बातों में धीरता ला देता है। प्रेम में निज स्वार्थ के लिए तनिक भी जगह नहीं, कुछ भी पाने की कल्पना तक नहीं होती। प्रेम सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है। प्रेमास्पद अनन्य भाव से जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हृदय को समर्पित रखता है। यह तो प्रेम का एक पहलू हुआ। अब इसके दूसरे पहलू पर भी विचार कर लें। स्वार्थ वशीभूत या किसी आशा से किया गया प्रेम घनिष्ठता और शुद्धता को क्षीण कर देता है। इसलिए कहा है, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पढ़ना नहीं, अपने को गढ़ना है। यह पोथियों द्वारा हरगिज नहीं किया जा सकता। हाँ, पोथियों के माध्यम से प्रेम का अभिनय अवश्य किया जा सकता है, और इस अभिनय को कहते हैं मुख में राम बगल में चूरी। प्रेम के नाम पर आज सर्वथा सर्वत्र जो हमें दिखाई दे रहा है केवल अभिनय है, खोखला, अर्थहीन, केवल स्वार्थ के वशीभूत। ऐसा प्रेम स्वार्थ सिद्धि के बाद नष्ट प्राय हो जाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप और अर्थ है प्रेम में हो जाना। आज इससे हम सब वंचित ही हैं, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है। संसार से किया, संसार में किया और संसार द्वारा किया गया प्रेम टिकाऊ नहीं होता, उबाऊ होता है। आज है कल नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी इससे तो कभी उससे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सब मिथ्या प्रेम। प्रेम तो वास्तव में प्रकृति से किया जाता है, प्रभु से किया जाता है, प्रकृति भाव से किया जाता है। इसलिए कहा है, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। प्रेम सदा बड़ी वो करें जो शशिकला सुवेश, पै पूनो या मे नहीं ताते कबहू न शेष। ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान से ही किया जा सकता है, और भाग्यवान ही कर पाते हैं। यह प्रेम गुणों से रही

0: है। इसमें कामना की गंध नहीं, हर क्षण बढ़ता ही रहता है। इसका प्रवाह सदा अटूट ही बना रहता है। वह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इस अवस्था में केवल प्रेम को ही देखना, प्रेम को ही सुनना और प्रेम का ही चिंतन करना होता है। ऐसा प्रेम जित देखूं तित श्याममयी, वस्तुतः प्रेम में विगलित हो जाना ही उसकी सर्वोच्चता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति कुछ ऐसा ही प्रेम था। गोपियों के मन प्राण सब कुछ कृष्ण के लिए हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर डाला। इस लोक परलोक में गोपियाँ और किसी को भी नहीं जानती। उनका जागना, सोना, खाना, पीना, चलना, फिरना, श्रृंगार सज्जा, गाना बजाना सभी कुछ श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए है। अतः प्रेम का तात्पर्य सुख पहुँचाने से है। वास्तव में प्रेम गोपियों ने किया है। सच यह है कि यह ढाई आकर का प्रेम हमारे तुम्हारे प्रेम किए से नहीं हो जाता। पंडित बनता है गोपी सम प्रेम आचरण से। प्रेम की पहचान ही है अनन्य भाव। जहाँ यह हुआ समझो प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हुआ तो फिर उसे देखने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं रहती, अंतर्दृष्टि खुल जाती है। सूरदास जी ने क्या कुछ नहीं देखा, आँख वालों से अधिक देखा और अधिक गाया। इतना गाया कि इससे आज हमें दृष्टि मिलती है। जब उनके गहरे अर्थ हृदय में बैठते हैं तो हमारा हृदय भी स्फूर्त होकर उन्हीं लीलामय दृश्यों से सूरदास जी के संग विचरने लगता है। कुछ क्षण के लिए ही प्रेम का आस्वाद मिलता है, और एक समय ऐसा आता है जब यह रंच मात्र का नहीं रहता, पूरा भोजन हो जाता है, जीवन प्रेममय हो जाता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पड़ी पड़ी पढ़म हुआ, पंडित भया न कोए। प्रेम जीवन में परिभाषित हो जाता है और सुवासित होकर न केवल निज को अपितु सर्व सर्व सर्वत्र को आलोकित कर डालता है।
1: ये था आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। मिताली बी सिंह की आवाज में आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का अंत।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पौढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

0: श्रोताओ, मिताली भूपेंद्र सिंह के स्वर में हम सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित हो रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, राम राम। आज कृषि चर्चा में हम चर्चा करांगा जायद म नर्सरी प्रबंधन का बारा म। वाचक स्वर निरुपमा मिश्रा को। किसान भाई होन गर्मी का मौसम में फसल उपज लेने का बाद खेत का हली बखरी का खुलो छोड़ दियो जाए, पर यदि इना समय खेत का छोटा सा भाग में नर्सरी में पौध तैयार करने को कार्य यदि किसान भाई अपना खेत का ऐसा हिस्सा में करी ले जहाँ की मिट्टी में पर्याप्त नमी और उछाव हो, तो थोड़ी सी सिंचाई में भी वो आने वाला मानसून का मौसम का लेन अतिरिक्त आय को साधन बनाई सकज। किसान भाई होन नर्सरी प्रबंधन का लेन सबसे पहले बात करा मिट्टी की, तो एक कालेन मिट्टी भुरभुरी अच्छी जल निकास वाली और पोषक तत्व नसी भरपूर होनी चाहिए। नर्सरी में बढ़ने वाली क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि निंदाई गुड़ाई में आसानी रहे, न क्यारी से क्यारी का बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाई होन नर्सरी में पौध रोपण का लेन बीज को चुनाव महत्वपूर्ण छे, तो एक कालेन अच्छी गुणवत्ता वाला ठोस और चमकदार बीज न को चुनाव करना चाहिए। बीज चुनाव का बाद बीज न क फपूंद नाशक दवा से उपचारित करनु चाहिए ताकि बीज जनित रोग न सी पौध न को बचाव हो सक। क्यारी नख थोड़ा ऊंचा स्थान पर तैयार करा, न एका चारे किनारा और कोना नख फावड़ा का उल्टी तरफ से अच्छी तरह से ठोकी देवा। किसान भाइयों, बीज बोने से पहले बीज न प अच्छी छनेल कंपोस्ट की पतली सी परत चढ़ाई देवा, फिर बीज क तैयार क्यारी में आधा से 1 इंच की गहराई पर बोई देवा। न अगर बीज छोटो छे तो क्यारी में बीज छिड़की क ऊपर से घास फूस से ढकी क हल्की सिंचाई करी देवा ताकि बीज को जमाव अच्छो होए, न बीज अच्छा से अंकुरित हुई जाए। पौध अंकुरण का बाद एका में उगने वाला खरपतवार का नियंत्रण का लेन समय समय पर निंदाई गुड़ाई करता रहनु चाहिए। किसान भाई होन गर्मी का मौसम में बनायल इनी पौध नर्सरी में सिंचाई को विशेष ध्यान रखा, एक नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करा, शाम को समय सिंचाई करनु सबसे अच्छो रह। किसान भाई होन पौध का तेज धूप से बचावना का लेन छाव की व्यवस्था करा, क्योंकि तेज धूप से पौध जलन की संभावना रज। किसान भाई होन जायद म नर्सरी प्रबंधन का लेन खाद का रूप में वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग लाभदायक रज, एका उपयोग से पौध की बढ़वार अच्छी हो। पौध न क जरूरी पोषक तत्व मिलता रहे एका लेन संतुलित उर्वरक न को उपयोग करनु चाहिए। किसान भाई होन जायद का मौसम में आप गिलकी लौकी करेला टिंडा टमाटर मिर्च और बैंगन की पौध तैयार करी सकोज। किसान भाई होन नर्सरी में पौध न म फपून को संक्रमण होने पर ट्राइकोडर्मा वीडी को उपयोग लाभकारी रज, कीट को प्रकोप होने पर नीम तेल को छिड़काव उपयोगी रज। चूंकि नर्सरी में पौध नाजुक अवस्था में रज तो बढ़ता को

0: जिस जैविक दवा को उपयोग करा, रासायनिक दवा का प्रयोग सी पौध कर नुकसान हो सकज, इन्हीं बात को ध्यान रखा। पौधन का बीच उचित दूरी का लेन अतिरिक्त पौधन की छटाई करी देवा। पौधन का बीच दूरी होना सी वो स्वस्थ न मजबूत पौध बनेगा। किसान भाई हो, नर्सरी में पौध 25 से 30 दिन में तैयार हुई जाए, फिर इन्हें तैयार पौध का आप तैयार खेत में लगाई सकोज। तो किसान भाई हो, जायद में नर्सरी प्रबंधन पर आज की कृषि चर्चा में बसे रोज। राम राम
1: श्रोताओ, ये थी कृषि चर्चा।
2: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
3: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
2: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
1: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की। सुबह 7 बजे आपको सुन पाएंगे राजेश निमा की काव्य रचनाएं। उसके बाद 7:30 पर प्रादेशिक समाचार होंगे, इसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और उसके बाद 7:20 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी देंगे प्राकृतिक चिकित्सक श्री जगदीश जोशी।

सुबह 7:30 बजे आज विशेष सुनहरे पल राहुल देव बर्मन और किशोर कुमार इस द्वय पर केंद्रित एक बातचीत आप सुनेंगे। अभिनेता लेखक अमित महोदय से विद्याधर मुली की बातचीत सुनिएगा विशेष सुनहरे पल कार्यक्रम में सुबह 7:30 बजे। उसके बाद 8 बजे समाचार पत्रिका समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:15। आपको सुनवाएंगे गजलें, कलाकार घनश्याम वासवानी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके मीत ये गीत सुनेगा सुबह 8:30। 9 बजे से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से और 10:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम, 10:20 पर कुछ निमाड़ी लोक रचनाएं आपको सुनवाएंगे।

आज की ताजा खबरों का संकलन किया है प्रियंका गुप्ता ने। और पहली खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नोडल विभागों की बैठक में खंडवा और बुरहानपुर की मंडियों में कपास उत्पादन किसानों से लिया जाने वाला मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसा करने का निर्देश दिया है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल और अन्य समकक्ष बलों, पुलिस और होमगार्ड के साथ निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए 11 शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित किया गया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा क्षीरधारा ग्राम योजना लागू की गई। इस योजना में खंडवा जिले के 124 ग्रामों का चयन हुआ है।

खरीफ मौसम की बुआई से पहले किसानों को योजनाओं, नई तकनीकों और खेती के बदलते तौर तरीकों से जोड़ने के लिए आज शनिवार से प्रदेश भर के विकास खंडों में कृषि रथ दौड़ेंगे।

ग्यारह के वी के रमा कॉलोनी फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य के कारण शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक यानी आज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस विद्युत आपूर्ति बाधा में संबंधित ओल्ड सर्कल ऑफिस रोड, कैलाश नगर, अनाथ आश्रम, नागचून रोड क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।

0: शनिचरी अमावस्या पर्व के अवसर पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने 15 मई शाम 4 बजे से 16 मई को रात्रि 10 बजे तक नर्मदा नदी का जल स्तर एक समान और स्थिर रखने के आदेश जारी किए। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल के 19वें सीजन का 60वां मुकाबला आज शनिवार कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा। मौसम। कल दिन का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज की ताजा खबर। FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा। विशेष कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं कवि राजेश निमा से उनकी काव्य रचनाएं।
1: एकांत के आनंद को बताती हुई ये कविता। जाने क्यों अच्छा लगता है, जाने क्यों अच्छा लगता है किसी बंद अंधेरे शांत कमरे में दुबकना। जाने क्यों अच्छा लगता है किसी बंद अंधेरे शांत कमरे में दुबकना, जैसे सन्नाटा एक बदन हो और उसकी गोद में मेरा सिर। जैसे सन्नाटा एक बदन हो और उसकी गोद में मेरा सिर। खामोशी जैसे

लोरी सुनाती हो, थपकियां देती हो जैसे माँ हो। मुझे नींद सी आने लगती है, मुझे नींद सी आने लगती है और लगता है वक्त वहीं ठहर जाए और मुझे नींद सी आती रहे। अगली रचना है जिसमें मैंने नियति से कुछ बात कहने की कोशिश की है। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे नियति होती है जो कि अदृश्य होती है, तो नियति के लिए मेरी ये बात सुनिए। छुप छुप कर करती रहती है मुझ पर कितने वार, फिर भी तो ना मानी मैंने अब तक तुझसे हार। नियति मैं तुझसे डरा नहीं, देख अभी तक जिंदा हूं मैं मरा नहीं। छुप छुप कर करती रहती है मुझ पर कितने वार, फिर भी तो ना मानी मैंने अब तक तुझसे हार। नियति मैं तुझसे डरा नहीं, देख अभी तक जिंदा हूं मैं मरा नहीं। कर ले जो है करना, मुझको तो है तपना मुझको और निखरना, मैं हूं एक अनोखी काया मुझको तो है चलना। नियति थकना होगा तुझको, रुकना होगा तुझको, चरण वंदना करने मेरी झुकना होगा तुझको। मैं हूं एक अनोखी काया मुझको तो है चलना, नियति थकना होगा तुझको, रुकना होगा तुझको, चरण वंदना करने मेरी झुकना होगा तुझको। मेरा है उद्घोष खरा, होती तुझको जो अक्ल जरा, होती अब तक तू पानी पानी। मेरा है उद्घोष खरा, होती तुझको जो अक्ल जरा, होती अब तक तू पानी पानी। मुझको अपना राजा चुनकर बन जाती तू मेरी रानी। खुद को शायद खुदा समझती पर्दे के पीछे रहती है, हिम्मत है तो सामने आ, आके मुझसे हाथ मिला। हो जाने दे अंतिम दंगल, फिर जो होगा होगा मंगल। नियति सुन ले मेरी ये ललकार, आमंत्रण ये कर स्वीकार, छुप छुप कर क्यों करती वार। ना मानी है ना मानूंगा मैं तो तुझसे हार। नियति मैं तुझसे नहीं डरूंगा, अब तक तू मुझे मार ना पाई, मैं आगे भी नहीं मरूंगा, हर पल दो दो हाथ करूंगा। पराजय तेरी होगी नियति, विजेता मैं बनूंगा, विजेता मैं बनूंगा। और अब एक गीत सुना रहा हूं जिसमें मैंने गर्मी का चित्रण किया है।

पर मेरा ये गीत है जिसमें मैंने हर पल के साथ कम होते हुए जीवन के बारे में बताया है और हमें क्या करना चाहिए ये भी सुनिएगा। सॉन्ग

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजेश नेमा से उनकी काव्य रचनाएं।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। 7:10 हुए हैं, आइए भोपाल केंद्र से सुने प्रादेशिक समाचार।

0: जन जन तक सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत। बोले, ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बाग देवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम वेरेंटसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेल्फ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भूशाला को मां बाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां बाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भूशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ बागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो बागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गाँव में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: इन पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट UG परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच CBI कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvsp.ujjain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। NIS पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरिया महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 सेवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। चेतना कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सक जगदीश जोशी से विद्याधर मुली की बातचीत। विषय है प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा स्वास्थ्य।
1: जगदीश जी, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: धन्यवाद सर। नमस्कार।
1: आजकल बातें प्रकृति की बहुत होती है, उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की भी होती है। अब अन्न की हम बात करते हैं तो हम मोटा अन्न खाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं और खेती में भी जैविक खेती को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक यात्रा सी नजर आ रही है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोगों का मत यह है कि ये सामान्य बीमारियों के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा ठीक है, लेकिन लंबी बीमारियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के को लेकर लोग शंकित हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में संक्षेप में शुरुआत में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे?
2: देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा दीर्घजीवी रोग और तुरंत वाले रोग सभी में लाभ देती है। प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य यह होता है कि हमारे जो शरीर के सफाई कर्मी अंग हैं, आपकी आंतें, किडनी, त्वचा, लंग्स, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। चिकित्सा के सिद्धांतों को रखकर चिकित्सा करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ मिलता है।
1: ओके। तनाव एक तत्व हुआ करता था जो जीवन में कभी आता था कभी नहीं आता था, किसी एक व्यक्ति को होता था, लेकिन आज लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी समय में गहरे तनाव से जूझ रहा है, ग्रसित है
2: जी।
1: प्राकृतिक चिकित्सा तनाव के क्षेत्र में किस तरह से मदद करती है और क्या तरीके होते हैं?
2: देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि आपका यदि पेट खराब है तो आपका दिमाग खराब है, प्रसन्न और आनंद में रहेंगे
1: जी।
2: पेट की खराबी ही रोग का मन का कारण है।
1: अगर कोई हमारा श्रोता जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उसे ज्यादा नहीं मालूम है तो क्या क्या विधियां होती हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं इसके, ये संक्षिप्त में आकर आप हमें बता सकें तो बहुत अच्छा होगा।
2: मूले जी, सबसे सरल चीज है कि एक नियम का पालन यदि आदमी कर ले कि मुझे बिना भूख के भोजन नहीं करना है। यदि व्यक्ति बिना भूख के भोजन नहीं करेगा तो आप निश्चित मानिए कि वो 99% डिसीज से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, है ना। पुदीना आता है, कोथमीर भरपूर मात्रा में आती है, आम आता है।
1: जी।
2: तो ये फल क्या करते हैं, हमारे शरीर को गर्मी के मौसम में लड़ने की ताकत देते हैं। तो आप जिस भी मौसम में जो फल आ रहा है, सीजनल फ्रूट्स, क्या कहते हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड रीजनल फ्रूट्स, जो आपके क्षेत्र में उग रहा है और जो मौसम का फल है, आप उसका सेवन करें, आप कोई रोगी नहीं होंगे।
1: ओके।
2: इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी सरल सरल पद्धतियां हैं।
1: हाँ।
2: आपको कठिन पद्धति में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, गर्मी के मौसम में शरीर की बाहर की भी गर्मी बढ़ जाती है और अंदर की भी गर्मी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल।
2: अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए ठंडे पानी का नेपकिन आप गीला करकर अपने पेट पर रख लीजिए, तो आप
1: अच्छा।
2: ये देखेंगे कि 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपके पेट में ठंडक आ जाएगी और आपको राहत मिलेगी।
1: निमाड़ क्षेत्र तपता हुआ क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। अगर मैं बाहर धूप से अभी आ रहा हूँ तो कहा जाता है कि तुरंत पानी नहीं पीना है, पर इस तरह की दूसरी विधि से शरीर के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, उसमें कोई हानि तो नहीं?
2: नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो आपको अचानक ठंडा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये प्रयोग जानलेवा सिद्ध होते हैं कि जैसे आप तेज धूप से आए, आप कूलर पर के वहां आकर सो गए या एसी के रूम में सो गए, तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो शरीर का तापमान जब सामान्य हो जाए, जब आप घर में आ गए हैं, शरीर का तापमान सामान्य हो गया है, फिर आप मटके का पानी में नैपकिन को गीला कर पेट पर रख लें, अपनी आंख पर रख लें, चाहे तो उसकी पट्टी बनाकर आप जमीन पर बिछा दें और उस पर सो जाए, ताकि आपकी रीढ़ उसके संपर्क में रहेगी, आपका शरीर एकदम कूल हो जाएगा।
1: और कैसा आहार हम लें, आहार अगर स्वादिष्ट हो तो व्यक्ति को खाने में आनंद भी आता है, लेकिन चिकित्सक जो आहार सुझाते हैं उसमें स्वाद की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं है?
2: आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बार आप निश्चित मान के चलिए, यदि भोजन में स्वाद नहीं है तो वो आपके शरीर को भी नहीं लगेगा, आप उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको आप बेमन से खाएंगे। इसके

0: गर्मी के मौसम में क्या आती है, केरी आती है, पुदीना आता है, कोथमीर आती है, आप बढ़िया उसकी चटनी बनाइए। और खास इस बात का ध्यान दें कि अत्यधिक मिर्च मसाले, मसाले खाना जरूर है पर उसको बैलेंसिंग वे में, जैसे कौन सा मसाला ज्यादा खाना चाहिए, जीरा, धनिया, सौंफ, पर गर्म मसालों से हमको बचना है, ज्यादा लाल मिर्च से बचना है, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं ताकि भोजन एक संतुलित और स्वादिष्ट बने। भोजन का स्वादिष्ट होना बहुत जरूरी है।
1: आजकल गेहूं से परहेज करने का एक चलन सा बन रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से कितना उचित है कितना अनुचित?
0: यह आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। कई लोग कहते हैं कि गेहूं में ग्लूटीन होता है और ये नहीं खाना चाहिए, है ना,
1: जी
0: जबकि बरसों से लोग गेहूं खा रहे हैं। ये
1: हाँ
0: हमारे मेटाबॉलिज्म का परिणाम है कि हमारे शरीर में मोटापा और दूसरी बीमारियां हो रही हैं।
1: जी
0: इसके अंदर हम पेस्टिसाइड और केमिकल को भी दोष दे सकते हैं, पर यदि हम इसके स्थान पर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, आप ज्वार का सेवन करेंगे तो ज्वार ठंडी होती है ना, और उसमें देखा जाए तो ग्लूकोज का परसेंटेज इन कंपेयर टू गेहूं निश्चित तौर पर कम होता है, तो हम उसका
1: अच्छा
0: सेवन कर सकते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत तौर का अनुभव है कि यदि आप गेहूं की चपाती भी संतुलित रूप में खाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई मोटापा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर बशर्ते ध्यान रखें कि बाजार का जो गेहूं आप पिसवा हुआ लेते हैं
1: हाँ
0: उसके स्थान पर आप चक्की पे पिसा हुआ आटा जो थोड़ा मोटा हो, तो उससे क्या
1: जी
0: होता है वो हाथों में चिपकता नहीं है।
1: बहुत से लोगों को नींद न आने की शिकायत होती है, वो बहुत मेहनत कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि अब अगर हम बिस्तर पर लेटेंगे और हम तुरंत सो जाएंगे, हम इतना शरीर हमारा थक चुका है, मन हमारा थक चुका है, लेकिन जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो नींद नदारद।
0: नींद का संबंध हमारे फिर से पाचन पर आ गया। यदि व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है
1: जी
0: या उसकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ी हुई है, शरीर गर्म तप रहा है, तो आप निश्चित तौर पर उसको नींद नहीं आएगी। कोशिश ये रहे कि शाम का खाना हम समय पर खा लें, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 5 से लेकर 10 मिनट के लिए आप टहल के आइए, तो क्या होगा
1: जी
0: कि जो आपने भोजन किया उसका पाचन आसान हो जाएगा। उसके बाद आप पेट पर ठंडे पानी का नेपकिन और आंख पर ठंडे पानी का नेपकिन रख के कोई भी मधुर संगीत या कोई प्रवचन जो किसी संत महात्मा का हो, जिससे हमको प्रेरणा भी मिले और हमारा मन भी शांत हो, तो जब आपका मन शांत होगा, जब आपका पेट ठंडा होगा, है ना, जब आपका पाचन सिस्टम सही काम करेगा, तो निश्चित तौर पर नींद आएगी ही।
1: वो जो पुरानी कहावत है कि पेट रखो ठंडा और पांव रखो गर्म, क्या ये उसी उसी सिद्धांत पर आधारित है?
0: बिल्कुल सही बात। सिर रखो ठंडा,
1: सिर
0: पेट
1: रखो ठंडा
0: रखो नरम,
1: नरम
0: पैर रखो गरम। तो
1: जी
0: हम क्या कर रहे हैं आजकल, उल्टा हो गया। क्या हो गया है, पैर तो एकदम ठंडे, पेट
1: हाँ
0: एकदम कड़क पत्थर जैसा, और सिर में एकदम तूफान। हम पेट की सफाई रखें, माइंड को कूल रखें, और सकारात्मक चिंतन पढ़ें या सुने, तो आप निश्चित मान के चलिए कि नींद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी।
1: और बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई पांव दबा दे तो बड़ा इत्मीनान हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसी सेवा टहल करने के लिए रोज बरोज हमें मिल जाए, तो व्यक्ति खुद ही कुछ ऐसा कर सकेगा कि जिससे थोड़ा बहुत वो अपने पांव की मालिश वालिश करके नींद ले आए।
0: प्राकृतिक चिकित्सा में तलवे की मालिश का प्रयोग है। उसमें हम
1: अच्छा
0: क्या करेंगे, हाथ में 4-5 बूंद खोपरे का तेल, क्योंकि मौसम गर्म है, तो
1: जी
0: खोपरे का तेल लेके दोनों हाथों से अच्छे से तलवे की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्विस्टिंग वाली मसाज यदि जोरदार तरीके से करते हैं दोनों पैरों में, तो
1: अच्छा
0: आप निश्चित मान के चलिए कि नींद बहुत ही अच्छी आएगी। और एक
1: ओके
0: प्रयोग
1: जी
0: और आपको बताना चाह रहा हूँ, आप रात को सोने के पहले नाक में गाय का घी या तिल्ली का या बादाम का तेल, कोई तेल आप डालते हैं, तो निश्चित तौर पर नींद का आनंद और बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे प्रयोग हमें बताए, थोड़ा बहुत प्राकृतिक चिकित्सा से परिचय भी कराया है। निश्चित ही हमारे जो श्रोता हैं उसका लाभ जरूर लेंगे, और इसके अन्य जो दूसरे जो विषय हैं उन विषयों पर भी किसी अन्य कार्यक्रम में हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। इस समय हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद,
0: थैंक यू,
1: नमस्ते।
0: धन्यवाद। नमस्कार
2: श्रोताओ, आपने सुना चेतना कार्यक्रम। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: सुनहरे पल के सभी श्रोताओं को विद्याधर मुले का नमस्कार। और आज हम इस कार्यक्रम को थोड़ा विशेष बना रहे हैं। विशेष इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स की जो बहुत अच्छी आवाज़ें हैं उनमें से एक आवाज़ है किशोर कुमार की, और इस यूनिवर्स के बहुत अच्छे कंपोज़र, बड़े कंपोज़र्स में से जिन्हें रखा जा सकता है वो हैं आरडी बर्मन, जिन्हें राहुल देव बर्मन पंचम के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस जोड़ी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ, हमारे शहर खंडवा के साथ साथ मुंबई में भी बहुत मशहूर श्री अमित महोदय हैं। आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: खंडवा के लाल हैं अमित महोदय जी, और मुंबई में राइटर के तौर पर, एक लिरिसिस्ट के तौर पर, एक उपन्यासकार के तौर पर और अभिनेता के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की जोड़ी पर। इस जोड़ी को आप किस तरह आंकते हैं?
1: संगीत का जो इतिहास है उसमें शायद इससे बेहतर जोड़ी तो नहीं हुई मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तरफ किशोरदा हैं जो संगीत की तालीम उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन उसके बाद भी संगीत का वो मुकाम शायद उस स्तर का कोई गायक मैं कहूँ तो वो नहीं हुआ। और जो उनसे सीनियर भी थे वो भी इस बात को स्वीकार करते थे कि हाँ मुझसे 20 है ये किशोर
0: जी।
1: तो जब मन्ना डे ये बात कह दें तो फिर बात खत्म हो जाती है।
0: तो और संगीत की जहाँ तक आपने जो पढ़ाई की बात की, राहुल देव बर्मन जी की बात कर दूं कि उन्होंने मैहर घराने से सरोद सीखना शुरू किया, तबला सीखना शुरू किया, लेकिन वो परंपरागत शिक्षा शायद उन्हें रास नहीं आती थी।
1: हाँ, एक्चुअली एसडी ये बात अच्छे से जानते थे, बड़े दादा एसडी बर्मन जी, कि भाई ये आरडी के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत अलग तरीके से खिलेगा। तो इसलिए उन्होंने एक तो मेहर घराने से संबंधित, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फोर लोक था, वो पूरा उनके अंदर पूरा जज्ब था
0: जी।
1: तो वो तो बच्चे को मिलना ही था, आरडी के पास वो था ही वो बात
0: जी।
1: और फिर बाद में उनका जो किशोरदा और एसडी का जो कॉम्बो था, उन दोनों के साथ में आने से जो एक सुयोग बना
0: जी,
1: फिर वो म्यूजिक भी बहुत अपने आप में। और आरडी जो म्यूजिक घराने से जो उन्होंने सीखा वो तो सीखा ही, लेकिन साथ में उन्हें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का बड़ा शौक था
0: जी।
1: आरडी ने लगभग विश्व के सारे जो बड़े बड़े, जो शायद किसी ने सुने भी नहीं थे, वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए। जैसे नेपाल का मादल अपने आप में बहुत यूनिक, शायद किसी ने यूज नहीं किया, वो उन्होंने यूज किया और उनके हर उसमें होता था वो।
0: और वो गजमेर जी को भी वो वहीं से, नेपाल से लेकर आए।
1: तो वो ये स्पेशलिटी, और इसीलिए वो बहुत सी रागों को इकट्ठा कर देते थे एक साथ, पता भी नहीं चलने देते थे कि ये राग है, जबकि जहाँ पे ध कोमल नहीं लग रहा होता वहाँ भी लगवा देते थे वो। तो ऐसी जो अद्वितीय प्रतिभा थी संगीत की, वो आरडी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। वो आधुनिक भी हैं, वो मतलब शास्त्रीय संगीत भी समझते हैं, सारा उनके अंदर वो। इसीलिए जो राजेश खन्ना, अपने आप को जब राजेश खन्ना कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे आरडी और किशोर छिपे हुए होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: किशोरदा बिल्कुल आपको पीछे दिखाई देंगे।
0: आराधना से एक तरह से संगीत बदल गया, फिल्म निर्माण बदल गया, और उसका जो रूप तेरा मस्ताना, नो डाउट उसमें तो सचिन देव बर्मन साहब का संगीत है, लेकिन उस गाने का जो ट्रीटमेंट है पे राहुल देव बर्मन की
1: भूमिका है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो छाप मतलब बाद में बप्पी लहरी पे भी दिखती है
0: जी,
1: मतलब आरडी से बच नहीं पाता कोई व्यक्ति। हालांकि ठीक है वो उनके इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाते, लेकिन कहीं कहीं कोशिश करते हैं कि आरडी तक पहुंचे।
0: आरडी से कोई भी नहीं बच पाता, और आज के दौर के भी जो संगीतकार हैं इतने मुतासिर हैं कि वो बताते हैं कि किस जगह पर हमने आरडी का प्रभाव है हमारे ऊपर।
1: सही बात है,
0: तो इतना प्रभावित उन्होंने किया है।
1: बिल्कुल सही।
0: मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, आनंद भोसले जी जो
1: जी
0: के बेटे हैं, उन्होंने एक बार बताया कि सैन फ्रांसिस्को में किसी प्रोग्राम में वो थे, और जो क्लासिकल म्यूजिक का वो बड़ा कॉन्सर्ट था, और वहां मैंने एक बड़े आर्टिस्ट को आरडी बर्मन साहब के गाने सुनाए।
1: अच्छा।
0: उन्होंने वो गाना सुनकर कहा कि ये तो शुबर्ट है, और वो शुबर्ट जो नाम वेस्टर्न क्लासिकल में बड़ा नाम है, तो ये शुबर्ट की लीग में है। फिर आनंद भोसले कहते हैं कि मैंने कुछ रेयर गाने आरडी बर्मन साहब के मैंने सुनाए, कि ये बर्मन साहब की ये रचनाएं आप सुने। उसके बाद वो सुन के उन्होंने कहा कि मैं करेक्ट करना चाहता हूँ अपने आप को,
1: बिल्कुल सही,
0: ये मोजार्ट है। वेस्टर्न क्लासिकल का जो टॉप मोस्ट नाम है
1: वो भी अपने
0: उसकी तुलना उन्होंने राहुल बर्मन से की।
1: बिल्कुल
0: सही। तो एक तरह से वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंपोजर थे, अगर वो हिंदी में काम न करके, बांग्ला में काम न करके वेस्टर्न में एरिया में काम करते तो निश्चित ही विश्व के सबसे बड़े संगीतकारों की लीग में वो शामिल होते।
1: बिल्कुल सही बात।
0: आगे बढ़ने से पहले एक गीत आपकी पसंद का सुन लेते हैं जो किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की जोड़ी का हो, फिर आगे बात।

0: राहुल देवर्मन और किशोर कुमार का एक गीत मुसाफिर हूँ यारो मुझे बहुत पसंद है। उस गाने के बारे में एक खास चीज ये है कि राहुल देव बर्मन कुछ वो जो कहते हैं ना कि लीक छाड़ी चलने वाले लोगों में से थे, तो आमतौर पर वो तांगा चल रहा है, वो तांगे के लिए वो जो नारियल के खोल का इस्तेमाल करते थे, जो घोड़े की टाप वाली जो बीट नैयर साहब भी खूब इस्तेमाल करते थे, रोशन साहब ने भी किया, लेकिन उन्होंने वो तांगे के लिए घोड़े की टाप न लेके वो जो साइकिल का पहिया घूम रहा है उसके लिए कॉर्ड्स और अकॉर्डियन का इस्तेमाल किया था।
1: अच्छा।
0: तो एक बहुत अद्भुत है, घोड़े की टाप को निगलेक्ट करके जो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो उन्होंने उस घोड़ी पर जो घुंघरू बंधे हुए थे उस घुंघरू से उन्होंने तांगे को एस्टेब्लिश किया।
1: हाँ, वो ये ऐसे ऐसे इस प्रकार की चीजों के लिए तो उस माइंड को बीट नहीं किया सकता
0: जी।
1: ओ माझी रे को आप देखिए तो खुशबू का वो गाना मतलब फिल्म को भी बहुत बड़ा करता है और गाना तो अपने आप में है। उस गाने में जो पानी का उन्होंने जो पानी की जो छाप का यूज किया है वो अल्टीमेट है वो
0: जी।
1: मतलब वो उसका कोई कुछ उसकी तुलना नहीं किया सकती अपने आप, बहुत महान है,
0: बहुत महान। कलाकारों के साथ जैसे एक जोड़ी वाली बात बनती है, बहुत सारे संगीतकार जोड़ियों में बहुत अच्छा काम करते थे और हमने देखा है हुसनलाल भगतराम से लेकर अभी तक जोड़ियों में काम करते रहे हैं। एलपी है, फिर शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी है, उसमें से हालांकि जाहिर तो नहीं होता पर माना यही जाता था कि एक व्यक्ति कंपोजिशन का काम करता है तो एक अरेंजमेंट देखता है, एक लाइजनिंग का काम करता है, कुछ बाहर बातचीत करने फिल्में लाने

0: कुछ निपुण होते थे, लेकिन मदन मोहन साहब और राहुल देव बर्मन ये ऐसे कलाकार हैं कि जो आपको लगता है कि शायद जोड़ी में होते तो और ज्यादा सफल होते।
1: नहीं, आरडी का तो आरडी का जो मस्तिष्क है वो अलग ही प्रकार से काम करता था। मुझे लगता है वो हर तरफ से सोच लेते थे, जैसे उन्हें जैसे कई रागों को मिक्स करना है तो शायद जो पुराने जो संगीत के बड़े जानकार हैं उनको लगता होगा कि ये कैसे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो कर देते थे। जहाँ पे जिसे जो बाहों में चले आ वो जो सॉन्ग है उसमें उन्होंने ध कोमल का इस्तेमाल किया जबकि नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार का जो अचंभे वाला काम है वो आरडी के दिमाग में होता था और वो कर लेते थे। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो यूज कर लिया वो बाद में जो संगीत के जानकार होते थे वो देखते थे, ढूंढते थे, बोलते थे कि अरे ये वो वहां कैसे ले आए
0: जी,
1: तो ये असंभव है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया
0: जी।
1: तो ये जो म्यूजिक की इतनी बड़ी लेगेसी से आ रहे हैं, जो भैया घराने से आ रहे हैं और फिर यहाँ पे भी, इसीलिए उनका जो म्यूजिक है वो सीधा अनाहत पे आपके हृदय पे लगता है। आज भी उनका कोई भी गीत हो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बड़े अच्छे लगते हैं। जो अमित कुमार का गाना है वो कितनी स्लो बीट का नॉर्मल सा सॉन्ग है, हल्का सा म्यूजिक है, लेकिन तो वो बात थी। अच्छा, उनके उसमें भी मतलब सिर्फ गानों में नहीं, उनका जो बीजीएम था उसमें भी, बैकग्राउंड स्कोर में भी वो इसी प्रकार की तीसरी मंजिल का जो म्यूजिक था वो आज भी यूज हो रहा है, थ्रिलर सिक्वेंसेस में आज भी यूज होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: या जो शोले वाला जो किस्सा है जिसमें वो उनको बीजीएम बनाना था उसका, गब्बर का, तो वो गब्बर के पास उन्होंने आके देखा और देखा कि ये तो बेसुरा आदमी है, तो बेसुरा तानपुरा लाओ, तो उसका पीछे जो पूरा बैकग्राउंड स्कोर है उसका वो सारा बेसुरे वाला है। मतलब ये अलग एक्स्ट्रा माइंड होगा ना जो उसको कर रहा है
0: जी,
1: और फिर बाद में किशोरदा सब साथ में उनके आ जाते हैं तो फिर तो और सोने पे सुहागा हो जाता है।
0: सोने पे सुहागा होता है। अमिताभ बच्चन का एक कैरेक्टर जेल से छूट रहा है, बाबू नाम का कैरेक्टर,
1: वो उन्होंने गले से निकाला
0: और वो उन्होंने जो गार्गल जो आवाज होती है विश्व की सबसे मतलब अप्रिय आवाजों में से एक है, और वो गरारे की आवाज से उन्होंने उस कैरेक्टर का खूंखार होना एस्टेब्लिश किया, बिल्कुल ही अलग चीज। और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में वो उस बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल दूसरे संगीतकारों ने किया है।
1: किशोरदा के साथ जो वो उनका जो प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया था, एक फास्ट सॉन्ग है और एक स्लो है। पहले स्लो चल रहा है वो, जब वो लोग बड़े सुस्त पड़े हुए स्लो चल रहा है, किशोरदा भी उसी एकदम वो हाई नोट वाला गा रहे हैं, गाला नीचे करके गा रहे हैं प्यार हमें किस और वो सब, और फिर बाद में और फिर धीरे धीरे धीरे जब वो एकदम से उठाते हैं जब वो कार में निकलते हैं, तो आरडी और उन्होंने कितने अच्छे से उसको बना डिजाइन किया होगा कि वो आज भी जहन से निकलता नहीं
0: जी। वही गाना सुन लेंगे।
1: हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं।

0: श्रोताओं, सुनहरे पल कार्यक्रम में आज श्री अमित महोदय हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं राहुल देव बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी के। ये दोनों कलाकार, जो तरबियत है दोनों की, जो शुरुआत हुई है सचिन देव बर्मन साहब जिद्दी में मरने की दुआ, किशोर कुमार साहब ने पहली बार गाया था, लेकिन जब जैसे ही आराधना के बाद किशोर कुमार सबके लिए प्लेबैक करने लगे और राहुल देव बर्मन एक संगीतकार के तौर पर मशहूर हुए, तो फिर एक के बाद एक लंबी फहरिस्त उन गानों के सामने आ गई। उन फहरिस्त में से कोई एक गाना आप चूज कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक हो सकता है?
1: हाँ, जिसे हम बेवफा हरगिज़ न थे, वो ऑल टाइम ग्रेट लगता है मेरे को, क्योंकि वो मतलब वो फिल्म तो बहुत ही हल्की लगती है मुझे, जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे फिल्म दमदार, लेकिन वो गाना अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे ही कोई सुनता है तो उसे लगता है कि 8-10 बार दिल टूटा है, और वो जबकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है वहाँ पर। वो गाया ही इतने कन्विक्शन के साथ में, और वो कंपोज इस प्रकार से हुआ है कि धर्म जी के लिए भी वो बहुत ग्रेट सॉन्ग है।
0: बिल्कुल,
1: वो किसी बहुत बड़ी फिल्म का गाना हो सकता था
0: जी,
1: जो बहुत सुपरहिट फिल्म होती, लेकिन वो गाना ही अपने आप में सुपरहिट था।
0: हाँ।

0: किशोर कुमार साहब के बारे में सभी जानते हैं कि वो सर्वप्रिय थे, हर संगीतकार को उनकी आवाज़ प्रिय थी, लेकिन जब गुलजार, राहुल देव बर्मन, हाँ, और किशोर कुमार मिलते थे तो एक अलग ही रसायन पैदा होता था और अलग ही गीत बनते थे। तो ऐसा, चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से बहुत गहरे जुड़े हैं, टीम के कारण कुछ अलग बात पैदा होती है?
1: हाँ, क्योंकि क्या, गुलजार जो है वो अपने आप में अच्छा, एक जिसे कहा जाता है कि एक संगीत है, तो डांस के अंदर भी संगीत की बीट होती है, उस बीट से डांस को पकड़ा जाता है।
0: जी,
1: ऐसे अभिनय में भी कहीं कहीं शब्दों की बीट होती है, उस बीट से जो जितना उस बीट को पकड़ पाता है, उस लय को, उस डायलॉग की लय को जितना पकड़ पाता है, वो उतना बड़ा अभिनेता होता है। संजीव कुमार है, संजीव कुमार की अभिनय कला को गुलजार साहब ज्यादा अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, तो वो कहीं अभिनय की लय को समझते हैं, और साथ में वो डायरेक्टर भी हैं और लेखक भी हैं, तो वो इसलिए गुलजार के गीत जब किशोरदा और आरडी के साथ मिलके आते हैं तो इसलिए इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे अपने का जो गाना है, कोई होता जिसको अपना हम कहला अपना कह लेते यारों, तो फिल्म एक तरफ और वो गाना एक तरफ, तो वो इस प्रकार का जो ये इन तीनों के कारण है वो, या ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये इसका होना ही बहुत बड़ी बात है।
0: वैसे राहुल देव बर्मन ने एक समय में 25 से 30 फिल्में उनकी हिट हुई थी, और ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल की कि 25-26 फिल्में लगातार मेरी फ्लॉप हुई, और उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह से आउट हो चुके थे।
1: हाँ।
0: इस दौरान जो कुछ फिल्में उन्होंने की थी उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे जो नजरअंदाज हो गए, जैसे ऐसा समाना होता, जमीन आसमान का गाना, या फिर रोज रोज आंखों तले, फिल्म जीवा। तो कुछ एक गाने ऐसे हैं जो अगर वो उनकी हिट फिल्मों में होते तो शायद और ज्यादा हिट।
1: मुझे लगता है दादा के जाने के
0: बड़े दिल वाला या ये वादा रहा आज इतना बड़ा हिट है, लेकिन फिल्म फ्लॉप थी तो उस वक्त वो गाने इतने नहीं चले।
1: सही बात, नहीं, दादा के जाने के बाद से मुझे लगता है वो वैक्यूम आ गया, क्योंकि आरडी भी किशोरदा के साथ जो बना रहे थे वो बहुत बड़ा बना रहे थे ना, बाकी सबके साथ में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, नो डाउट, बट ये जो दौड़ी एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रही थी, चाहे गाने के उसमें हो या ऐसे भी साथ में, इवन जैसे जो जय प्रकाश वाला जो किस्सा है जिसमें 50,000 खर्चा कर दिया वाला जो किस्सा, तो यदि एक सिंगर, किशोरदा ऐसा सिंगर, आरडी को इतनी सी बात के लिए वो एक प्रोड्यूसर को ये बोल सकता है कि 50,000 खर्चा कर दिए गाने में डाल दे, तो उनका रिश्ता कितना गहरा होगा अंतर मन से।
0: आपकी बात से मुझे अचानक ही ख्याल आया कि उनकी जो फिल्म थी, आखिरी फिल्म स्वाबित हुई दुर्भाग्य से, 1942 लव स्टोरी, उसमें भी मुख्य गायक के तौर पर उन्होंने कुमार सानू को लिया। वो जो शायद जो किशोर कुमार
1: कमी, हाँ,
0: की
1: हाँ,
0: कमी थी, वो उन्होंने उस
1: इस प्रकार से की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने भी अच्छा गाया शानूदा ने भी, बट क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि उस समय अमिता को एक चांस मिलना था उन गानों के लिए, शायद वो और जस्टिस कर पाते, क्योंकि किशोरदा की ज्यादा करीब अमिता की आवाज लगती है।
0: बिल्कुल,
1: कुमार शानू की आवाज कहीं भी कहीं कहीं लगता है कि वो बहुत बड़े सिंगर हैं, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट किशोरदा की कोई कोई कॉपी करता है किशोरदा की, तो दिल में लगता है कि क्यों कॉपी हो रही है, अपना कुछ होना चाहिए, अंदाज अपना होना चाहिए। जैसे उदित नारायण भले ही शानू दा से थोड़ा सा कम रेंज के सिंगर माने जाते हैं, बट मुझे लगता है कि उदित नारायण की एक अपनी छवि है, एक अपनी उनकी वॉइस का
0: ओरिजिनलिटी जिसे हम कहते हैं,
1: हाँ, जिसे एसपी बाला अपने हिसाब से हैं, ठीक है, आरडी से मतलब रफी साहब से इन्फ्लुएंस है उनका, बट आवाज में ये नहीं लगता
0: जी,
1: ये बात होनी चाहिए। शानू दा में वो थोड़ा सा लगता है मुझे, बाकी बहुत बड़े सिंगर हैं
0: जी,
1: और आरडी भी आखिरी में जो करके गए वो बहुत बड़ा है,
0: बहुत बड़ा है।
1: मतलब वो पूरे डिकेड में वो उस फिल्म का,
0: मुझे जावेद अख्तर साहब की एक बात याद आती है, उस चीज के लिए मुझे वो सबसे अच्छा शब्द लगता है कि एक मुक्केबाज जैसे नॉकआउट पंच का इंतजार करता है, वो नॉकआउट पंच था कि उन्होंने अपने विरोधियों को धराशायी कर दिया, लेकिन अफसोस ये है कि उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए थे।
1: तो कहीं बॉलीवुड भी मुझे वहां अंधा दिखाई देता है कि वो प्रतिभा को पकड़ नहीं पा रहा है, आरडी की प्रतिभा को नहीं पकड़ पा रहा।

0: खड़ा है वो। तो किशोरदा के जाने के बाद ये हो पाया, तो किशोरदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती और वो फिर वो काम्बो हमको 90 या 2000 तक मिलता,
1: बिल्कुल
0: मिलता। मतलब वो दशक मिल जाता हमको, 2000 तक का दशक मिल जाता। तो किशोरदा की भी वॉइस तो फ्रेश थी तब तक।
1: चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत आपकी पसंद का होगा, बताइए कौन सा गीत सुना है।
0: बड़े अच्छे लगते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: हम अमित महोदय जी को शुक्रिया कहते हैं सुनहरे पल कार्यक्रम को और सुनहरा बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे मिठू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 8 बजे हैं, आइए सुने समाचार पत्रिका समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का

0: सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो

0: मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
2: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30,00,000 मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श

0: शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई गजलें। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। कलाम निदा फाजली का।

अगर तलाश करे कोई तो मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। गजल बशीर बद्र की।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको गजलें सुनवा रहे थे कलाकार घनश्याम वासवानी। ये आकाशवाणी खंडपा है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: नमस्कार श्रोताओं, सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार और सारे श्रोताओं के नमस्कार के साथ

हमारे उन श्रोताओं को भी नमस्कार जिन्होंने हमें ढेर सारे ईमेल और फरमाइशी चिट्ठियां भेजी हैं। आपकी पसंद का गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होगा, आपके नाम भी शामिल होंगे। चलिए गाने से पहले नाम की बात। भाटापारा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं सोहन जोशी, अर्चना, आनंद राठौड़, गिरिजा राठौड़ के साथ लोकेश पायल, सावन नायक, बबला यादव, अंकिता और वैदेही जोशी, मोरटा का माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। सनावत के श्रोता हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरी निवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक, सचिन और प्रभा कटारिया। इंदौर से अनिल कवचाले, सभिया और सुषमा। ग्राम थापना के हमारे श्रोता हैं ठाकुर राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति उदयराज सिंह और अश्विन राज सिंह भदौरिया। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। आनंद जोशी, तनुजा और फाल्गुनी जोशी खंडवा से। सीतामढ़ी बिहार के श्रोताओं के नाम आपको बताते हैं, मसर्रत जहां नाज, तलहत जहां, फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया नाज और नाजिया नूरी नाज। बीड के श्रोता हैं किशन सबकाल, आशा, सोनिया और विशाल सबकाल। सनावत से फरमाइश करी शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख ने। अब्दुल हलीम खलीफा, हबीब सलमानी, शफीक सलमानी और जावेद खलीफा खंडवा से। देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर, आपने मोताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है। खंडवा के हमारे श्रोता हैं शालिया डावर, हलीमा, जिक्रा, आयशा और उनके साथी। गोगावा से अकबर खत्री, तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा और सुजाता, रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय, अकोला से। और खंडवा के श्रोता हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर। बढ़वा से ख्वाहिश भेजी है प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। ओंकारेश्वर से मेल आया है राकेश पप्पू सेन का, साथ में कुछ नाम और हैं, ओम प्रकाश सेन, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश द्वारकी और उनके साथी। इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा चौधरी, विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और उनके साथी। खंडवा से यहीं से कमला देवी महोबिया, अनय, अनाया, भयू और लूसियान भी, विमल वर्मा, नीतू और प्राची वर्मा बीसलपुर पीलीभीत से, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप और शीतल राजेश, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी। यहीं से ठाकुर भवानी सिंह वैस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर। खंडवा के ही हमारे श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। खंडवा से ही राजेंद्र कटारे, अनिता उजय और उज्जवल कटारे के साथ मीतांश का नाम भी है। जमशेदपुर के श्रोता हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चार्वी के साथ प्रणय सांवले। यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके और यशोधरा रामटेके। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी और प्रतिमा। राजकोट से रवि सोनी, पूजा और पायल। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य। हांसी से राजू मेघलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्ण आनंद, सत्यम आनंद और उनके साथी। बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हैजल और रेशमा साहू। सहरसा बिहार के हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल, बुल्केवाली और फलना झा। खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा, शालिनी, कामेश, भारती और उनके साथी। बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष, पार्थ और अण्वी कुशवाहा। और गुरावा के श्रोता नंदलाल राजपूत, राजू, मनुका, नंदिनी और रुद्र राजपूत। आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

गए हो तो ये लगता है कि यहाँ

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आपकी ख्वाहिश पर, आपकी फरमाइश पर। डुमराव बिहार से आसमा परवीन, वलीउल्ला अंसारी, डॉली और जूही परी। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, कैलाश फूल माली और मोहम्मद हसनैन पवार। दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े और वनीता गंगराड़े, माणक चंद राठौड़ और पुष्पा राठौड़, जामली कला से। धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, सायमा, हसनैन और खुशी। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिड़वे, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनिता। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने के साथ प्रतिभा, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि अमरावती से। सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री और नूर मीणा, इरफान मीणा और कासिफ मीरा। गाजीपुर जमानिया से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति और गमहरिया से रोहन जायसवाल और उनके साथी। एटा के हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल रशीद और अनस अब्बासी। बोरी खुर्द जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगू, साक्षी, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, स्वाति, प्रणाली और सानवी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव प्रिया और भानु प्रिया। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित के साथ तानिया नारंग का नाम है। फरमाइश सहारनपुर से हमारे पास आई है कौशल्या जोशी, सोनारी डोमन और सुरेश। इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी और वंदना खर्चे। भिलाई से अनुश्री वली, ज्योति, प्रमिला। सनावत के हमारे श्रोताओं के नाम अशोक वर्मा, अर्चना।

अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा, मेहरानगर पश्चिम बंगाल से अभिजीत प्रसाद, दीपक दास, अनिता और उनके साथी, अमलेश्वर से सुमन, अजीता, प्रमिला और उनके बहुत सारे साथियों के नाम हैं, अकोला के शरद पाजपुर और शोभा पाजपुर, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुश, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह, दुलापुर से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस, सरदाना मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जिव्यम और सरदाना मेरठ के ही हमारे श्रोता आदि जैन, अंश और भव्य, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन और उनके साथी, नजमुल हौदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम कुमला झारखंड से, रतनपुर जन्या से भागीरथ नायक, जीतेंद्र, सुभाष, रविंद्र शिवानी, अश्विनी हर्षराज, अरविंद आदित्य और प्रियांश, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा, आशीष और उनके साथी, नागर कोहरा से फरमाइश भेजी है झग्गर राम साहू, बबलू, जामुन, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या ने, खंडवा से संजय मार्कंडेय, राजेंद्र, ममता, माया, मुकेश, संध्या, संहिता, वंदना, रंजना तारे के साथ किट्टू, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन, संजीव, डाबे राव, धनुरी तेरीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान, और हरियाणा के स्थान का नाम नहीं है, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस सीताराम और साहिल कांगड़ा। आइए आपको सुनवाते हैं एक गीत, फिर जन्म लेंगे हम, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये गौहर कानपुरी का गीत है, संगीत बप्पी लहरी का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपकी फरमाइश पर। गंडी पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन। दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। अमलेश्वर से प्रियंका चौधरी, सोनाली और उनके साथी नथाना। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसविंदर जस्सी और सीता और गीता। यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से। वणीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत भारत और कमल साहनी गोराया जालंधर से। जगराव से कमल पाठक, सुनील, दीपिका गव्या और सुच्चा सिंह पाठक। करजत मुंबई से अशोक मोगा, प्रमिला, ज्योति और डोमन मोगा। उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़ और आशा पोपलवाड़। रिंगनी से सुनील कुमार और आशा देवी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी, राकेश पाटिल और प्रमिला राजकोट से। महाराष्ट्र के किसी स्थान से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश का मेल आया है। इसी तरह गुजरात से ये मेल आया है, स्थान का नाम नहीं, धीरज रबारी और सचिन। और मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, सायना और निवान शर्मा। आपकी ख्वाहिश पर कार्यक्रम का यह आखिरी गीत है लता जी की आवाज़, फिल्म एक महल हो सपनों का।

0: लता जी की आवाज में हम सुन रहे थे एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का गीत। और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

सुना। वरुण ग्रोवर की बोलती है अनु मलिक की तरसी, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज। फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बौर ना।

0: आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल। रग रग में जोश

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाएं। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: विदह मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आंख में उबलती मेरी को।

बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: 10 बजने जा रहे हैं। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरे को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे

0: बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रूपये से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले की कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दाऊदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर 18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है
2: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको आज विभिन्न कलाकारों के गाए गीत सुनवा रहे हैं। पहली रचना कुंदा बोकील के स्वर में।

श्रोताओ, हमारे संग्रहालय से हमने आज सुगम संगीत की कुछ पुरानी रचनाएं निकाली हैं। आइए अगली रचना आपको सुनवाते हैं। ये भक्ति रचना है। स्वर शुभदा मेहराल का।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे सुगम संगीत।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
3: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
3: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
4: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत, कलाकार मांगीलाल तांगोरे और उनके साथी।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके

अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: मांगीलाल दांगुड़े और साथियों के स्वर में श्रोताओ, आप सुन रहे थे पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों के लिए हमारा कोपल कार्यक्रम।

0: बात करें तो वायुमंडल को जो तापमान छे इन साल बहुत ज़्यादा गर्मी छे, जिका चलता गर्म हवा ना यानी कि लू लपट भी चलने की बहुत ज़्यादा आशंका छे, जो कि हमारा लेना बहुत घातक भी हो सके। एक लेना सावधानी रखा, दोपहर का समय घर से बाहर नहीं निकला, नगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो पूरी बाह का कपड़ा पेरा, सूती कपड़ा पेरा, सिर का मोटा कपड़ा से ढकी न रखा, आँख न पर काड़ो चश्मो यानी कि धूप से बचाव वालो चश्मो लगे न रखा, कान न खा गर्म हवा से बचावा, हाथ नम सूती दस्ताना, पैर नम मोजा पेरी न घर से बाहर निकला, न साथ है अपने साथ पानी को साधन हमेशा साथ में रखा, ताकि समय समय पर हम पानी पीता रहवा, न शरीर में पानी की कमी नहीं होए। बच्चन आरू एक बात को ध्यान रखा कि जब भी हम बाहर धूप में से घर में आवा तो सीधा कूलर की हवा में नहीं बैठा, क्योंकि जो हमारा शरीर रह जो पसीना भरो रह न तापमान भी ज़्यादा रह, तो असामा तापमान का असंतुलन से हम बीमार भी पड़ सकें। असोज हम जब घर से बाहर जावा तब भी करा, अगर हम कूलर की हवा में छे घर में तो सीधा धूप में नहीं जावा, पहले कूलर बंद कर देवा 10 से 15 मिनट का लेन, तापमान का सामान्य होना देवा, उसका बाद में हम धूप में बाहर निकला। इना समय पानीदार फलों को सेवन करा, कैरी को पणों, छाछ, दही, नींबू को शरबत, ये सब पेय पदार्थ जो छे बच्चन वो हमारा शरीर का स्फूर्ति भी प्रदान करज न ऊर्जा भी देज। बासी भोजन न ज़्यादा तेल मसाला वाला भोजन से इना समय परहेज करा, सत्तू जैसा ठंडा पौष्टिक पेय न नारियल पुदीना की चटनी जैसा खाद्य हमारा शरीर का ऊर्जा प्रदान करज। तो बच्चन इना समय अपना खान पान न रहन सहन में थोड़ा सो बदलाव करा, क्योंकि अभी हमका पानी आउन तक लगभग 1 से 1.5 महीना तक यो समय बड़ी सावधानी राखी न बिताणोज। बड़ा न को कहणु माना न सुरक्षित रहवा, स्वस्थ रहवा।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बच्चन आज हम सबका हाथ नमा एक छोटो सो उपकरण जिमा पूरा संसार समय गयो, उंगली का इशारा से हमारा कई काम आसान हो गया। एक उपयोग से हमका कई लाभ छे, न अनावश्यक उपयोग से कई नुकसान छे। आओ सुना नमिता विपुल जैन दीदी से।
3: हमारे प्रिय नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं सभी को मेरी राम राम। आज की हमारी वार्ता का विषय है मोबाइल फोन के उपयोग एवं दुष्प्रभाव। मोबाइल फोन के उपयोग एवं दुरुपयोग को जानने से पहले हम थोड़ा सा मोबाइल के बारे में जान लेते हैं। बच्चों क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र भी कहा जाता है। सचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पहले के समय में जब हमारे घरों में टेलीफोन होते थे तो वह एक जगह फिक्स होते थे, परंतु यह मोबाइल फोन कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। मोबाइल के अतिरिक्त इसे सेल फोन, सेल्युलर फोन भी कहा जाता है। मोबाइल के जनक मार्टिन कूपर माने जाते हैं। उसका वजन आप यकीन नहीं मानेंगे लगभग 2 किलोग्राम के आसपास था। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर खड़े होकर जब मार्टिन कूपर ने उसी भारी भरकम फोन से अपना पहला कॉल किया था, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह खोज कितनी भारी सफलता अर्जित करेगी। सन 1995 में शुरू हुई यह सेवा आज भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। तब से लेकर अब तक पूरा मोबाइल फोन ही बदल गया है। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए ही करते थे, लेकिन अब नए फोन में हम इसके माध्यम से पढ़ाई, शॉपिंग, बैंकिंग, व्यापार, बिल भरना और पते ढूंढना जैसी कई महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं। 29 साल पहले भारत में शुरू हुआ यह सफर PCO की लंबी लाइन से निकलकर लगभग हर भारतीय की जेब तक पहुंच चुका है। शुरुआती समय में जब मोबाइल से आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल के भी हमें पैसे देने पड़ते थे। आउटगोइंग कॉल्स के लिए जहां हमें 16 रुपए प्रति मिनट की दर से पैसे देने पड़ते थे, वहीं इनकमिंग कॉल्स के लिए हमें लगभग 8 रुपए तक देने पड़ते थे। इसके अलावा मोबाइल खरीद

के लिए भी आपको लगभग 4,900 से 5,000 रुपए तक चुकाने पड़ते थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। इन्हीं सब कारणों से मोबाइल के शुरुआती 6-7 सालों में महज 10 लाख कस्टमर तक ही यह सर्विस पहुंच पाई थी। इसके बाद 2003 में कॉलिंग पार्टी पेज यानी CPP का सिद्धांत लागू हुआ। इसके अनुसार मोबाइल पर इनकमिंग कॉल फ्री कर दी गई और लैंडलाइन पर भी कॉल करने की दरें घटाकर 1.20 रुपये प्रति मिनट कर दी गई। इसके चलते ग्राहकों की संख्या में जहां हर महीने तेजी से इजाफा हुआ, साथ ही साथ मोबाइल फोन की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। सन 2008 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया जो 3G के नाम से जाना गया, और सन 2009 में 3G टेक्नोलॉजी ने नेटवर्क की दुनिया में लगभग हलचल मचा दी। इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड 21 Mbps थी, जो 2G के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। साल 2012 में 4G की शुरुआत हो गई, और बच्चों आप तो जानते ही हो कि अब भारत में 5G भी आ गया है। भारत में अब 1 अरब से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साल 2018 के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। आज स्मार्टफोन का जमाना है। हर कोई युवा, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, अधेड़ उम्र का हो, गांव की महिला हो, कोई भी हो, हर कोई मोबाइल की तरफ तेजी से आकर्षित होता जा रहा है। वर्तमान समय में मोबाइल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। सुबह अलार्म लगाकर उठने से लेकर रात को सोने तक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में मोबाइल का बहुतायत से उपयोग कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि स्मार्टफोन से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में, जिससे हम सब भी स्मार्टफोन का उपयोग स्मार्ट तरीके से कर सकें। तो बच्चों, पहले हम फायदे की बात करते हैं कि मोबाइल फोन आपके लिए किस किस तरह से लाभदायक हो सकता है। आज लगभग सबके पास ही मोबाइल फोन है, और मोबाइल का सबसे बड़ा और मुख्य उपयोग यही है कि आज व्यक्ति कहीं भी हो, कभी भी हो, आप उससे मोबाइल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्यक्ति से बात करने के लिए उसके घर पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आपको चैटिंग और शेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस आपके मोबाइल में इंटरनेट पैक होना चाहिए। आप अपने दोस्तों से फोटो, वीडियो, म्यूजिक, कॉन्टेक्ट नंबर, इवन आप अपनी पढ़ाई के नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स को भी आप तक पहुंचने में सुविधा रहती है। आज विश्व के किसी भी कोने में किसी को भी फ्री मैसेज भेज सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बस आपके फ़ोन में वह ऐप होना चाहिए, और जिसे मैसेज भेज रहे हैं उसके पास भी यह सुविधा होनी चाहिए, और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए कई पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं, और आप अपना स्टेटस भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप कई लोगों का ग्रुप भी बनाकर सभी लोगों को एक साथ एक सूचना भेज सकते हैं, और ज़रूरी जानकारी एक साथ कम समय में पहुंचा सकते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको अपने मोबाइल से उसका नाम पता भी जान सकते हैं। मोबाइल के प्रयोग से घर बैठे कई गृहिणियाँ भी ऑनलाइन क्लासेस लेकर बिजनेस करके लाखों रुपए कमा रही है। मोबाइल के माध्यम से हम घर बैठे बैठे ही बिजली का, पानी का, पेपर का, अनेक संस्थाओं के बिल का भुगतान भी कर सकते हैं, और वह भी बिना लाइन में लगे हुए। बच्चे गूगल का उपयोग करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों कि मोबाइल के कितने फायदे हैं। परंतु जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही यदि मोबाइल आप लोगों के लिए फायदेमंद है, अच्छा है, तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इनके उपयोग देखे हैं, वैसे ही हम इनके नुकसान के बारे में भी समझ लेते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले आजकल बच्चों की आदत हो गई है कि सुबह उठने के बाद में सीधे मोबाइल ही हाथ में आता है। मोबाइल के कारण मानव शरीर

0: में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज, हृदय रोग, कई बीमारियां भी दे सकता है। आजकल अधिकतर लोग मोबाइल फोन में अपनी गोपनीय जानकारियां सेव करके रखते हैं, जो कि गलत है। इससे मोबाइल हैकर्स आपकी गुप्त जानकारियां चुराकर उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फोन को कभी भी अपने शरीर से सटाकर नहीं रखना चाहिए। इसकी विकिरणों से त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होने का खतरा है। स्मार्टफोन के इस युग में इंटरनेट होने से बच्चे गलत जानकारियां भी मोबाइल से लेते हैं, जिसके चलते वह बचपन में ही बड़े होने लगे हैं। मोबाइल फोन के कारण छात्रों की पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर हो गई है। उनकी एकाग्रता क्षमता में बहुत कमी देखने को आई है। रात भर मोबाइल का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को कमज़ोर बना देता है। महंगाई के इस युग में मोबाइल फोन के कारण और उसके नेट के रिचार्ज के कारण फिजूल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड बढ़ने से हमारे पैसों की भी सुरक्षा खतरे में आ गई है। मोबाइल से सेल्फी लेने के चक्कर में आए दिन लोगों की मृत्यु के समाचार हमें सुनने में आते हैं। मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अनेक ऐप्स के कारण आज का युवा वर्ग घंटों इसे देखने में निकाल देता है और अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद कर देता है। और तो और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है रील बनाने का। चाहे युवा हो, बच्चे हो, अधेड़ उम्र के हो, हर कोई रील बनाने की चाहत में अपने आसपास के रिश्तों की मर्यादा को खोते जा रहे हैं। लगातार अपलक मोबाइल की स्क्रीन को देखने से, उसमें घंटों गेम खेलने से आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मोटे मोटे चश्मे लगने लग गए हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि मोबाइल के कितने नुकसान हैं। इस प्रकार मोबाइल के फायदे और नुकसान को समझकर मोबाइल का प्रयोग हमें अपनी सोच समझ और विवेक से करना चाहिए। मोबाइल का आवश्यकता से अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यदि हम अपनी समझदारी का प्रयोग करके मोबाइल का उपयोग करें, इससे अच्छा हमारा और कोई दोस्त नहीं हो सकता। पर कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, वैसे ही मोबाइल की अति आसक्ति भी हमारे जीवन के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बाल श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आज की वार्ता को सुनकर अपने मोबाइल के टाइमिंग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा और अनावश्यक मोबाइल के प्रयोग से बचिएगा।
1: अभी हम सुन रहे थे वार्ता मोबाइल फोन के उपयोग एवं दुरुपयोग। वार्ताकार थी नमिता विपुल जैन दीदी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बच्चन, हुन साल दर साल धरती को तापमान बढ़ने को कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधाने की कमी, बढ़ती सड़क ना, बढ़ता शहरीकरण का साथ साथ बताए जाए रोज की अलनीनो प्रभाव भी एको कारण छे। तो काय हो जी अलनीनो प्रभाव, आज हम जानांगा जिज्ञासा में। अलनीनो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा का पास समुद्र की सतह का पानी का असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना छे। ये घटना 2 से 7 साल में होज दुनिया भर का मौसम, खास करी न भारत का मानसून, कृषि न वैश्विक तापमान पर एको गहरो नकारात्मक प्रभाव पड़ज। अलनीनो का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हुई जाज, जेका से भारत में बारिश कम होने की न सूखा जैसी स्थिति हुई सकज। तो बच्चारण, आग स्थिति न असी नहीं आवा एकालेन हमको जागरूक रहनोज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगावा, न धरती का ठंडी रखने को प्रयास करा, पानी की हर बूंद का बचावा। पानी की बचत हमारा भविष्य का लेना बहुत जरूरी छे। नब आज की कहानी हम आपका लेन कहानी लायाज, जेको शीर्षक छे कर्म भाग्य से बड़ो होज। सुनजो ये कहानी ध्यान से।

नगरी का राजा विक्रमादित्य, जो कि एक महान न्यायप्रिय धर्मप्रिय नेक साहसी राजा था, उनका दरबार में एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी आया। सफ़ेद धोती, माथा पर चंदन, हाथ में ताड़पत्र की गठरी, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का बारे में उस सबई बताई देता था, यहाँ तक कि मृत्यु को दिन भी बताई देता था। अमर राजा ने आदर सत्कार करियो, उनको सम्मान से उनका आसन दियो। बठाड़िया ने पूछियो कि आचार्य आज उज्जैन पधारने को काय कारण छे। ज्योतिषी ने आश्चर्य से कहो कि महाराज, मैंने 40 साल की ज्योतिषी में ग्रह नक्षत्र पढ़िया, पर आज तक आसी कुंडली नहीं देखी जे में ग्रह न का विपरीत काम हुई रोज। ग्रह कई कई राज न आपका जीवन में आरु कई घटित हुई रोज, इच कुंडली हूँ देखना आयोज। अब ग्रह न का विपरीत जो होना पर भी आपका जीवन में ये जो यश कीर्ति राज्य धन संपदा मंगल छे। विक्रमादित्य ने उनका मुस्कुराते हुए कहो कि ठीक छे, पर हमारा जन्म को समय कई छे ये तो हमको भी नहीं मालूम है। आम ज्योतिषी ने आँख बंद करी, न उंगली न पर कुछ गिण्यो, न फिर बोलिया कि भाग्य केवल ग्रह नक्षत्र नसी नहीं निर्धारित होता है, ओम कर्म को भी होनो जरूरी छे। आपका द्वारा कराया गया कर्म, गुप्त दान, आपकी तलवार अन्याय का प्रति अन्याय का खिलाफ उठज, प्रजा का सुख न समृद्धि का प्रति आपको समर्पण, ये सब आपका कर्म, आपका ग्रह नक्षत्र न का प्रभाव का बदली रहज। अब पूरी सभा मौन थी, सब सुनी न। राजा विक्रम जो था वो हंसया न, उन आश्चर्य से पूछो कि अच्छा आम बताओ कि मारी मृत्यु कम होएगा, आपकी ज्योतिष विद्या का देखो न बताओ कि मारो मरण को दिन कहाँ कुछ है। आचार्य जी ने आँख न बंद करी, न उनमें उनकी आँख न में आंसू आई गया। उनने कहो कि आप जैसा महान राजा जो कि प्रजा की आँख न में आंसू नहीं देख सकता, उनकी मृत्यु को विधान लिखना का लेना विधाता का भी दुई बार सोचना पड़ेगा। आपकी कुंडली में मृत्यु योग हाइज नहीं छे, तो केवल अमर कीर्ति योग। आपको शरीर दुनिया से जाएगा, पर युग युग तक आपको नाम अमर रहेगा। ऐसा कहो जाए बच्चारण कि उन दिन का बाद आचार्य जी ने किसी की भी कुंडली नहीं देखी है। वो उज्जैन में बसी गया, न सबसे ईज कहता था कि जो भाग्य छे वो कर्म से बड़ो नहीं होता है, कर्म हमेशा बड़ा रहज। कहानी को सार यो छे बच्चारण कि हम अपना काम से, अपनी मेहनत से अपनो भाग्य भी बदली सकें, क्योंकि अगर हम सिर्फ भाग्य या किस्मत का भरोसा बैठी रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पावांगा। एका लेना जीवन में सफल बनने का लेना हमको मेहनत न त्याग समर्पण करना पड़ेगा। सफलता मिलनू नहीं मिलनू बात की बात छे, पर हम ओका लेना प्रयास नहीं करा तो ये तो जीतने से पहले हार मानी लेनो जसो होएगा। तो बच्चा जो विक्रमादित्य की कुंडली थी वो ठीक विपरीत थी उनका, जो उनका यश कीर्ति मिली थी ओका सी। एका लेना हमेशा अपना कर्म पर विश्वास रखा। तो ये थी आज की कहानी, आपका कैसी लगी हमको जरूर बताओ। जो नाब अपना कार्यक्रम में समय एक निमाड़ी गीत को, तो आओ सुनान भाई बद्री प्रसाद शर्मा को गायो योग गीत।

0: इना निमाड़ी गीत का साथ बच्चन हन आज को कोपल कार्यक्रम यहाँ पूरा होच। आज्ञा देव आपके अंतिम बाला बनखा। राम राम।
1: श्रोता आप सुन रहे थे कोपल कार्यक्रम, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्राणी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफ़र पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गाँव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत का ही एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था AR रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना,

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी। और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, 10 नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, जब जब हम तुमको

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाएगा ना, तो वाह वाह। और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई।

सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिए की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है, वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी, कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे, सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांदी ठंडा कर सकता है, वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का

धर्म अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती कलियां महकती फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप।

इस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।

0: जन विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है, अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

0: को पाता है, जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हीं ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें

मिल गई, उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्म पत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई, उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त देनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आ गई ना, बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

और आजकल ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी रही।

गंगा ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है, लेकिन जिस प्रकार

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं।

0: गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जैटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
3: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जाँच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CBSE ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी

0: नमस्कार।
1: महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: कप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक

0: और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए

0: ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में

2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: में मोहब्बत के गा रहा हूँ हसीना।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नखमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: आकाशवाणी।
1: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव की प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026

0: इसके पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादालाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादालाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
1: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी है तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कही सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
0: दादालाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
1: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है, यानी कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है। तो और दूसरी जो सिम्पोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से ज़मीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी है। बड़ी में तो डेंडों की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और जो सिम्पोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है, उसको डेंडों की संख्या ज़्यादा लगती है और उसका डेंडों का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिम्पोडिया का जो डेंडू है वो ज़्यादा देती है, उसका वेट भी ज़्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया, 70 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है और दादाला टेक्निक से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो 3 बड़ी बड़ी ढालियाँ काटना यानी पति को मान्य होगा तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
0: दादालाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
1: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो अभी 7,000 रुपये क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है तो 1,20,000 का 7,000 रुपये पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपये, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
0: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की,

और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति, उपज नहीं आता। लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है, लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूँ का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से युवाओं को सिखाया तंत्र और मिला, तो सब युवा भी मांग यही है।

0: खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
1: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
0: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मुझे मैंने प्रयोग किया है कर्नाटक में इंडी गांव है, वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए। तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते हैं, हर दिन का हर ज्वार का है, भाकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
1: दादालाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ, सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के इस सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी।

0: हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
1: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
2: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
2: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहां शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं, पर लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
3: तेरी तरह
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ये भौरा कहाँ से आ गया?
2: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे, मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
6: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
7: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजी ना।
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
7: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
7: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
2: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा।
8: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
3: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
4: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
7: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
3: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
7: और ही ढंग से?
4: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
2: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
7: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
3: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
4: बहुत मीठा है इसका गला,
3: करती रहती है सबका भला,
4: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
3: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
4: कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
7: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
3: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
7: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
4: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
7: फिर
4: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
7: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
3: किंतु क्या आर्य?
7: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से

0: होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
0: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
3: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
0: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
0: ये लीजिए
1: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
3: आपके पास ये अंगूठी?
0: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
3: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
0: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
1: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चुंचल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान सावधान।
1: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
3: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
0: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला।
2: चलो
0: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष

0: किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है। और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
1: विशेष बात?
0: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
1: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
0: उसकी भी एक कथा है माधवे।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
0: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
0: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
0: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
0: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश।
1: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश है माता का?
1: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, खुद समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
4: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
4: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
4: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
1: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
4: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: आह, क्या क्या कह रही हो अंशिया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा।
2: तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: ए, इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं?

0: बताओ तो, इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
2: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
0: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से।
0: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
2: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
0: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है।
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
2: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
0: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
0: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
0: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
0: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
0: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
2: फिर
0: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
0: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
0: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, गाया मैंने आज
1: मंच पर। आपने मंच पर दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
1: जी जी, उनका
2: उसका नाम था। तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एखादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी, माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समझो कालीपास सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लू क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी,
2: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं,
0: या
1: नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था।

0: जी
1: और फिल्म का नाम था बायानो नवरे संभाला।
0: ओ
1: उसमें
0: हाँ
1: डांस की जुगलबंदी थी,
0: हाँ
1: जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के गाए, एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने
0: अच्छा अच्छा
1: गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई,
0: अच्छा
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: मतलब ट्रैक
1: तो मैं
0: रिकॉर्डिंग शुरू हो
1: बहुत
0: चुका
1: ये
0: था।
1: दबती थी। हाँ,
0: जी
1: ट्रैक
0: जी
1: रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था
0: जी
1: शशांक लालचंद
0: जी
1: तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ
0: हाँ
1: हमारा। तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग गाया,
0: अच्छा
1: लेकिन उनको मालूम था वो संजय को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और
0: अच्छा
1: कुछ करने का नहीं। मतलब अच्छा, वो आप आपके हुक्म
0: हाँ हाँ
1: मैंने
0: हाँ
1: आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ
0: जी
1: माय
0: जी
1: गॉड।
0: जी
1: वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
0: अच्छा अच्छा
1: उनका।
0: आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का
0: जी जी
1: गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी
0: हाँ
1: आपने जीने ना
0: प्राण जाए
1: दिया।
0: पर वचन जाए, वो नैयर साहब का
1: नैयर
0: कंपोजिशन।
1: साहब का
0: क्या बात क्या बात
1: बहुत
0: है।
1: सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी
0: हाँ
1: होगी लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
0: ये गाना सुन लिया जाए।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें, ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था
1: खुद का
0: जी,
1: बैनर था।
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया? जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे आपने?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा,
0: ओ
1: वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी जी
1: पुराना कोई फिल्म का,
0: हाँ
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा,
1: हाँ दूसरा गाना लावणी,
0: ओहो
1: तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो
0: हाँ
1: लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच, मैं भी
0: हाँ
1: उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी, तो
0: अच्छा
1: अरे
0: अच्छा अच्छा
1: अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और
0: हाँ
1: वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है,
0: जी बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उन मुकाबले
0: हाँ
1: में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि
0: ओ
1: ये गाना इनका।
0: अच्छा
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे
0: हाँ
1: मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है। वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो
0: ओ
1: उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई
0: जी
1: कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर
0: हाँ
1: कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक
0: अच्छा
1: ही थोड़ा
0: अच्छा
1: थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना
0: हाँ
1: तो मस्त उनको मजा
0: क्या
1: आता था
0: बात है,
1: सुनने में।
0: क्या बात है,
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं
0: हाँ
1: आपको
0: हाँ
1: बताया कि
0: बिल्कुल
1: नहीं, मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे
0: हाँ
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका
0: स्क्रीन पर,
1: फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
0: अच्छा
1: देख
0: अच्छा कटआउट
1: बहुत
0: बनाया
1: बड़ा
0: था,
1: कटआउट बनाया था,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो उस बहुत खराब होता था लकड़ा था, पत्रे का बनाया था
0: जी जी जी
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो
0: जी
1: मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
0: जी जी
1: कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था,
0: हाँ
1: इंदौर
0: हाँ
1: के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है
0: हाँ
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे, तो
0: अच्छा
1: ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम
1: है,
0: रहा है,
1: ऐसा
0: अच्छा
1: लगता
0: अच्छा
1: था,
0: अच्छा
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ। एक
0: अच्छा
1: तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
0: हाँ
1: कि उसको
0: बिल्कुल
1: रिकॉर्ड जैसा लगा।
0: क्या बात क्या
1: लेकिन
0: बात,
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
0: जी
1: मैंने
0: जी जी
1: उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा
0: हाँ
1: गाना, फिर वो शांत हो गया
0: क्या बात
1: आदमी।
0: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
1: जी
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज
1: हाँ
0: किए
1: जी
0: हैं और विदेशों में भी किए
1: जी
0: हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
0: हाँ
1: अनुभव से
0: हाँ
1: आपको मालूम होना चाहिए
0: हाँ
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
0: जी
1: एक
0: जी
1: साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सांप के सामने ये करते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर दो गाने के बाद ये रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा
1: के नहीं आती बात।
0: अच्छा अच्छा
1: और जहां तक पहली बार भी गए
0: हाँ
1: किसी शहर में किसी गांव
0: हाँ
1: में छोटे से गांव में भी,
0: जी जी
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को,
0: ओ
1: किस
0: हो
1: प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा
0: हाँ।
1: होता था।
0: और
1: समझ
0: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।

0: ये है,
1: अच्छा
0: अच्छा
1: हाँ
0: लगता
1: हाँ
0: था, क्योंकि ये रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊँ या उनके बाद मैं गाऊँ
1: हाँ हाँ
0: तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे।
1: पसंद आता।
0: पहला बमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते थे
1: जी
0: फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: वो रफ़ी साहब का गाना एक दुगाना है,
1: हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: हाँ ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफ़ी साहब पहले शुरू करते
1: जी
0: थे,

0: रहेगा फिर जानी इसकी और परसों भी रहेगा और तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ,
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है
1: बहुत फर्क है,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी,
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
0: जी
1: थी।
0: जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी।
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगड़ धींगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छी है,
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल, शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
1: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी,
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल, मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी जी
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे
0: अच्छा
1: भी।

0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कांटेक्ट
1: जी
0: किया।
1: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ
1: है, अपना
0: जी
1: स्टाइल
0: जी
1: होता है।
0: एकदम
1: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
0: समझ।
1: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
0: सही बात
1: उनकी
0: सही बात।
1: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं, हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
0: हाँ जी
1: शमशाद
0: हाँ
1: बेगम
0: जी
1: जी के
0: हाँ
1: प्रस्तुत,
0: जी हाँ
1: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
0: यूं
1: किन
0: कहूंगी
1: कंपोजिशंस में
0: कि
1: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
1: जी जी
0: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
1: जी
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा
0: हाँ, अभी
1: अच्छा
0: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ समझ में आता
0: ऐसा चिल्लाते थे जरा
1: जी
0: भी।
1: जी
0: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाना,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो नंदुरवार करके गांव है छोटा
1: जी
0: सा धुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था,
1: हाँ
0: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने ली है
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है,
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं
0: वे
1: के समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है।
0: गाने
1: जी जी
0: बराबर उनको ए
1: बिल्कुल
0: करके चिल्ला देते वहां से।
1: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
0: हाँ,
1: सुना
0: वो
1: है, तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं।
0: अभी ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर
1: हाँ
0: टर वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना
1: जी
0: म्यूजिक
1: जी जी
0: चिपक
1: जी
0: के चलता था
1: जी
0: शब्दों को।
1: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है, सही बात
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा करते।
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से गाने के हिसाब से।
1: जी
0: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ,
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया कर ये कीबोर्ड वाला आया,
1: हाँ
0: उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
1: सिंगर
0: होता,
1: हाँ
0: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का,
1: बिल्कुल
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
1: हाँ
0: सालों साल तक।
1: जी
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे तो क्या कर रही है तू, शो करना अभी तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
1: हाँ हाँ
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो
1: जी
0: जाएगा
1: जी
0: ना, जायजे तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का
1: जी
0: उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात,
1: क्या बात
0: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
1: हाँ
0: म्यूजिशियंस,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो
1: अच्छा
0: ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो,
1: जी जी
0: लेकिन

0: फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय मानके।
0: विनय मानके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि
0: और
1: बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ,
1: हाँ
0: बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने। और
1: अच्छा
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्मर होता है,
1: जी
0: वो था। बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे
1: हाँ हाँ
0: किसी
1: हाँ
0: को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे,
1: जी
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा के।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर
0: एक
1: हैं
0: गाना था अन्ना
1: जी।
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा
1: अच्छा
0: खोटी वाली, कुछ भी मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे वो।

0: हिसाब से अच्छे थे, ठीक
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो,
1: जी
0: किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाता
1: जी
0: था
1: जी जी
0: उसको। उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन
1: हाँ
0: उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी जी
0: था,
1: जी
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं
0: माँ
1: जिन्हें,
0: जी
1: उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार, या तो संगीतकार, या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पाड़वा के शो में,
1: ओहो
0: वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान, और जो कुछ,
1: जी
0: विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी,
1: जी
0: या तो फिल्म कलाकार, या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी प्रभु
1: हाँ
0: कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली
1: बिल्कुल
0: सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी
1: हाँ
0: गुढीपाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: नहीं आई।
1: अच्छा
0: फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसे भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं
1: ओहो
0: कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है,
1: हाँ हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि
1: हाँ
0: हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा
1: हाँ
0: मालूम थी
1: मालूम था उनको,
0: उनको
1: क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता
0: जी
1: जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने
0: जी
1: अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी हाँ
1: हैं,
0: जी
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगी?
0: उनका भी एक सरदार फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ा
0: लावणी
1: ला
0: है,
1: पिकला
0: पाड़ा ला पिकला
1: अम्बा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में
1: हाँ
0: शामिल
1: होती,
0: होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत ही
0: था।
1: जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: अरघे पड़ाला पिकलाय अंबा आलावाय पड़ाला पिकलाय अम हो नीट बग पड़ाला पिकलाय अंबा। कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अंबा आप बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अंबा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अंबा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जोर लगा के

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब
1: कोशिश
0: गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा नसीब।
1: गुजराती तो वो एक गाना था,
0: हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात की एक मैं खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट
1: हाँ,
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी
0: बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे
1: हाँ
0: इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी चाहता
1: जी
0: है, पे पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी, उनके
1: अच्छा
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ
1: करके।
0: जी हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
1: जी
0: मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, रूपर वाले का ये कर्म है कि
1: करम
0: आज आप यहाँ पधारी
1: बिल्कुल बिल्कुल मेरे मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने
1: जी
0: अच्छे
1: जी
0: अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध
1: जी
0: भारती के तमाम सुनने वालों की ओर
1: जी
0: से
1: जी
0: हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपने

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपने झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी, लेकिन फूल के ठहरे मन में तो हलचल मचा गई।

0: बिटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।
1: हम

सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

को संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

0: छाया गीत के सुरीले सफर में आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। दीजिए राजुल को इजाजत। नमस्कार।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कड़वा जी पटेल और साथियों के गाए पारंपरिक निवाड़ी लोकगीत।

आप सुनी रहा छनी माड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: गोपाल

श्रोताओ, आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से आप सुन रहे हैं कड़वा जी पटेल और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आपने सुने पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत कलाकार कड़वाजी पटेल और उनके साथी। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं युववाणी कार्यक्रम।

हेलो दोस्तों, आप वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज के कार्यक्रम का होस्ट हिमांशु लेकर हाजिर हूं हमारा आज का क्रम जो कि है साप्ताहिक विज्ञान एवं खेल गतिविधियां। लेकिन हम बड़े हमारे क्रम की ओर हमेशा की तरह ही जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है वो यह है कि कौन सा तेल उत्पादक देश ओपेक से अलग हुआ है। और आज का जो दूसरा हमारा प्रश्न है वो यह है कि भारत का कौन सा राज्य 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाले देश का पहला राज्य बना। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि साइबर ठगी के कॉल अक्सर हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन सुविधा के साथ खतरे भी बढ़े हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सतर्क रहें और अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखें। श्रोताओं, कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। फोन पर आए किसी भी व्यक्ति को अपना OTP, ATM पिन, पासवर्ड या बैंक की जानकारी बिल्कुल ना बताएं। याद रखें, बैंक कभी भी फोन करके ऐसी जानकारी

की जानकारी बिल्कुल ना बताएं। याद रखें, बैंक कभी भी फोन करके ऐसी जानकारी नहीं मांगती है। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कम साझा करें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। आपके पासवर्ड में वर्ड यानी अक्षर, अंक डिजिट और विशेष चिन्ह जिसको हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं का जरूर इस्तेमाल करें ताकि उसे आसानी से कोई हैक ना कर सके। यदि आपके मोबाइल या बैंक खाते से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई दे तो तुरंत बैंक को सूचित करें या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 पर शिकायत जरूर दर्ज करें। दोस्तों, छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है, इसलिए जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक कीजिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम की ओर, जो कि है साप्ताहिक विज्ञान एवं खेल गतिविधियां, और आपको सुनाएंगे कुछ रोमानी गीत। तो चलिए नजर डालते हैं पहले वैज्ञानिक गतिविधियों पर। विज्ञान और मौसम की बड़ी खबरें। इस सप्ताह भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दो नई AI आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवाएं लॉन्च की है। इन नई तकनीकों की मदद से किसानों को 4 सप्ताह पहले तक के मौसम और मानसून की जानकारी मिल सकेगी। विशेष रूप से 16 राज्यों और हजारों उप जिलों में इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही IMD ने यह भी बताया कि इस बार मई महीने में सामान्य रूप से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि कई राज्यों में गर्मी और लू का असर भी बना रहेगा। भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार नई प्रगति देश को मजबूत बना रही है। दोस्तों, इस जानकारी के साथ सुनते हैं आज का यह पहला रोमानी गीत।

तकनीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार नए मिशनों पर काम कर रहा है। इस सप्ताह वैज्ञानिक चर्चाओं में शुक्र ग्रह मिशन शुक्रायन 1 काफी चर्चा में रहा। वैज्ञानिकों ने इसके उपकरणों तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी है। वहीं देशभर के कई तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। भारत का युवा अब विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित नहीं रख रहा बल्कि नई खोजों की ओर भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे गीत भी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से हमारी ओर बढ़ रहा है।

श्रोताओं, अब नजर डालते हैं खेल जगत की गतिविधियों पर। इस सप्ताह भारतीय तीरंदाज साहिल जाधव ने शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। यह उनके करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप पदक रहा है। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में मुंबई की टीम ने शानदार शुरुआत की और युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में रहा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लेऑफ की रेस बेहद दिलचस्प हो चुकी है और सभी टीमें जोरदार मुकाबले खेल रही हैं। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला मध्य प्रदेश लीग की तैयारियां भी तेज हो गई है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, अब समय है एक प्यारे से गीत का।

युवा भारत और फिटनेस। देशभर में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं को खेलों और फिटनेस से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञान हमें सोचने की शक्ति देता है और खेल हमें अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाते हैं। नई तकनीक, नए खिलाड़ी और नई ऊर्जा, यही है आज का नया भारत। और अब उस युवा की बात करते हैं जो किसी की ओर इशारा कर रहा है।

दोस्तों, विज्ञान और खेल दोनों ही हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। एक हमें सपने देखने की ताकत देता है और दूसरा उन सपनों को पूरा करने का हौसला। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते सुनते हैं आज का ये अंतिम सुपरहिट रोमानी नगमा।

दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछे थे, आइए जान लेते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था कि कौन सा तेल उत्पादक देश ओपेक से अलग हुआ है, तो इसका उत्तर है यूएई। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि भारत का कौन सा राज्य 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला है, देश का पहला राज्य बना, तो इसका उत्तर है राजस्थान। दोस्तों, अब आपके रेडियो दोस्त हिमांशु के दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। अब प्रस्तुत है फिल्म संकेत। सभी श्रोताओं को विद्याधर मुले का नमस्कार, और पेश है आज के इस प्रोग्राम का ये पहला गाना। फिल्म कारवां, आवाज आशा भोसले की।

Yeah.

फिल्म कारवां से गीत हमने सुना आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत रचना निश्चित है राहुल देव बर्मन की। और अब शंकर जयकिशन का एक संगीतबद्ध गीत आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म लव इन टोक्यो।

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फ

के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा आ लहरा किया जरा, आंखों से दिल में समा आ जा रे आ।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के बाद एक बार फिर चलते हैं आशा भोसले की आवाज़ की ओर, फिल्म ज्वेल थीफ का ही एक गाना।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हसर जयपुरी का एक गीत है जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जवानी दीवानी इस फिल्म का एक गीत, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा। शाम के 7 बजने को हैं, आइए सुने दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने

की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर

0: वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 MHz पर।
2: किसान भाई।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।

आप बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये है आकाशवाणी खंडवा। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत।

0: हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
1: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेगवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सबके आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए, क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
1: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
4: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, किस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
5: सीसीटीवी कैमरे
4: देखिए, जैसे कि CCTV सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर

यानी मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगर मालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघाटा सिंचाई

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई बहनों, आज 16 मई का हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का रूप में भी मनावें, क्योंकि आज का दिन अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने 1960 में सर्वप्रथम कामकाजी लेजर को सफलतापूर्वक परीक्षण करकर संचालन किया थो, जेका आधार पर आज हम आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रकाश की लेजर किरण का द्वारा कई शोध कार्य, चिकित्सा का आधुनिक उपकरण में हमें को उपयोग करी रहा, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक हथियार बनाने कई कल कारखाना में भी एक उपयोग किया जाए रोज। साथ लेजर शो का माध्यम से प्रमुख धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल पर रात्रिकालीन समय में आकाश में सांस्कृतिक नव धार्मिक कथानों को सजीव चित्रण भी कियो जाए, जेका से पर्यटक श्रद्धालु बड़ा प्रेम न भक्तिभाव से सूरज न देखा जाए, न हम अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक न पौराणिक इतिहास से जन समुदाय का परिचित करावन। साथ इनमें दिया गया ज्ञान न उपदेश ही मानव जीवन का कल्याण न आपसी प्रेम न भाईचारा न एकता को संदेश देने को प्रयास किया जाए। भाई बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर हमख अपनी बिजली की खपत कम करने की बात भी जरूर सोचना चाहिए। अनावश्यक बिजली नहीं जलावा, सौर ऊर्जा का वैकल्पिक साधन लगाने की कोशिश करा, क्योंकि सौर ऊर्जा का संसाधन में हम अपना मकान की पक्की छत पर एका पैनल लगाई कर सकें, न शासन द्वारा सोलर पैनल लगाई कर बिजली उत्पादन की यूनिट लगाने पर सब्सिडी भी देज एक ओबिल हम ले सकें। एकासी हम जो बिजली उत्पादन कराएँ ओकासी अपना घर की पूर्ति तो होवज, साथ यदि अधिक मात्रा में उत्पादन होवज तो ओको शासन द्वारा अन्य क्षेत्र में भी उपयोग किया जाए, नाम का आर्थिक लाभ भी मिलज। तो भाई उन्होंने सौर ऊर्जा अत्यधिक सस्ती न पर्यावरण से अनुकूल मानी गई, एक हमका जरूर अपनाना चाहिए। न आज का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर प्रकाश ऊर्जा का नया स्रोत अपनाना न अपना रोजमर्रा की जिंदगी में एक उपयोग करनो बहुत जरूरी भी छे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे

0: ओका बाद शासकीय भुगतान की जो प्रक्रिया रहे ओका माध्यम से जो बैंक खाता की जानकारी हमने पंजीयन का समय दी थी उना बैंक खाता में अपनी ई उपार्जन का माध्यम से जो हमने उपज विक्रय करी ओको भुगतान 7 दिन का अंदर कियो जाए। भाई बहनों ई उपार्जन से संबंधित यदि कोई समस्या आपका आती हो तो हमका शासकीय विक्रय केंद्र का प्रभारी महोदय से या जिला स्तर पर एक शिकायत करनी चाहिए। हमका चाहिए कि ई उपार्जन से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी से दिन प्रतिदिन हम अवगत भी होता रहा न अपना स्लॉट बुकिंग का अनुसार ही अपनी शासकीय विक्रय केंद्र पर अपनी उपज का लेकर जावा। भाई उन्होंने ये तो थी आज की हमारी ई उपार्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की बात न। अब भाई उन्होंने हमारे कृषि कार्य में आज का दौर में आधुनिक कृषि का साथ साथ जैविक खाद दवाइयों का उपयोग करनो समय की मांग का साथ साथ कृषि का यदि हम स्थायी रूप में बने कर रखना चाहें तो एक लेना बहुत जरूरी रहे। तो आज की स्थल रिकॉर्डिंग भेंटवार्ता को विषय भी एक से जुड़ेल छे। विषय छे कृषि में जैविक खाद का निर्माण एवं उपयोग। इना विषय पर विकासखंड छेगांव माखन का ग्राम अहमदपुर खेगांव का प्रगतिशील कृषक महेश पटेल जी से बात करी राज देवेश मांडले। तो आओ सुना ई भेंटवार्ता।
1: नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं विकासखंड छेगांव माखन के एक ऐसे प्रगतिशील कृषक भाई जो कि खरीफ मौसम के साथ साथ रबी मौसम की जो मुख्य फसलें हैं उसमें भी और अन्य जो फसलें हैं उन सभी प्रकार की फसलों में वो जैविक तरीके से ही अपना कृषि कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे जैविक तरीके से कृषि के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं।
2: महेश पटेल, ग्राम अहमदपुर खेगांव।
1: महेश पटेल जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: महेश पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप जैविक प्रकार से जो खेती कर रहे हैं आरंभिक जो तैयारियां हैं जैविक की वो किस प्रकार से करते हैं?
2: जैसे सर अब बरसात आने वाली है
1: जी,
2: इसके पहले हम केचुआ खाद वगैरह सब तैयार करके रखते हैं
1: जी। महेश पटेल जी, चूँकि अब गर्मी का इस समय मौसम चल रहा है तो अगले मौसम की जो खरीफ मौसम की फसल की तैयारी के लिए कौन कौन से कार्य इस समय आप कर रहे हैं?
2: सर हमारी गहरी जुताई चल रही है अभी ज़मीन की
1: जी,
2: उसके बाद रोटावेटर करके कंप्लीट कर देंगे खेतों को
1: जी जी जी जी,
2: और उसके बाद जैसे पानी गिरा कि हमारी बरसात की फसल की तैयारी चालू हो जाएगी
1: जी जी। इसी के साथ साथ मैं महेश पटेल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो खेत की जुताई की बात करी और इसी के साथ साथ जब हम फसल लगाते हैं उसके पहले हमारे बहुत से किसान भाई जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप अपने हर प्रकार की जो मौसम की जो फसल लगाते हैं उसके पहले जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद का उपयोग किस प्रकार से करते हैं?
2: गोबर सर जैसे आम किसान क्या करते हैं कि कच्चा गोबर जैसे उसको सही तरीके से पका के नहीं ज़मीन में डालते हैं, और हम क्या है कि उसका पूरा केचुआ खाद बना के
1: जी,
2: और हम सिर्फ एक एकड़ में 5 से 6 क्विंटल में हमारा काम हो जाता है
1: जी जी जी।
2: एक एकड़ ज़मीन में 5-6 क्विंटल खाद हमारी मतलब फसल के लिए पर्याप्त हो जाता है
1: जी जी। मतलब जो आप जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं वो पूर्ण रूप से पक्की खाद उस प्रकार की खाद का ही आप उपयोग करते हैं
2: जी।
1: महेश पटेल जी, जो खेत है उसमें देख रहा हूँ कि आपने कुछ जैविक खाद बनाने की इकाइयाँ भी लगाई है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जैविक खाद आप इस समय तैयार कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया को आप विस्तृत रूप में क्रमवार बताइए।
2: जैसे हम केचुआ खाद बनाते हैं
1: जी,
2: तो पहले हम जैसे हमारे पास घर के ही जानवर हैं 8-10 जानवर, तो उनका जो गोबर निकलता है
1: जी
2: उसको हम ऐसे पहले ज़मीन पर डाल देते हैं
1: जी,
2: उसके बाद उसको पानी छिड़कते रहते हैं
1: जी।
2: 10-12 दिन बाद हमारा जब बेड लगाने जैसी प्रक्रिया में आ जाता है कि भाई इतने में हमारा बेड लग जाएगा
1: जी,
2: तो हम उसको क्या करते हैं कि एक बार पलटी मार देते हैं तो उसकी जो गैस रहती है अंदर जो गर्मी वो निकल जाती है
1: जी।
2: उसके बाद 3x1 का हम बेड बनाते हैं
1: जी जी,
2: और उसको पूरे फैला के देते हैं, उसके बाद उसमें केचुए छोड़ देते हैं
1: जी जी जी। 3x1 का मतलब 3 फीट
2: चौड़ाई
1: और एक फीट
2: ऊंचाई
1: और यदि लंबाई की
2: लंबाई अपने पे जितना भी अपन ले सकते हैं
1: जी जी जी जी।
2: ऐसा
1: इसमें आप केचुए की कितनी मात्रा को डालते हैं?
2: केचुए हमारे यहाँ तो ऐसा है कि ये ऑलरेडी इतनी यूनिटें रहती है तो केचुए हम कम भी डालते हैं, तो जैसे केचुओं को जहाँ पर अच्छा भोजन मिलेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चले जाते हैं
1: जी जी,
2: हम ऐसे के ज़्यादा डालते हैं।

0: नहीं, उसमें
1: जी जी
0: ऑटोमेटिक सब चले जाते हैं वो।
1: जी जी महेश पटेल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो केंचुओं का जो जर्मिनेशन है वो कितने दिनों में बढ़ जाता है?
0: केंचुओं का तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ता है।
1: हाँ।
0: हमने पहले शुरुआती में मतलब हम सिर्फ कहीं दूसरी जगह से थोड़ा बहुत लेके आए थे।
1: जी जी
0: 4-5 किलो लेके आए थे। उसके बाद साल भर में हमारे यहाँ तो इतना हो गया है
1: जी जी
0: कि हम कल्पना नहीं कर सकते उसमें इतना केचुआ हो जाता है। सिर्फ उनको क्लाइमेट सही होना चाहिए बस। जी,
1: अच्छा, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्लाइमेट के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं?
0: हम पेड़ की छांव में बनाते हैं
1: जी,
0: और उसके

0: जी,
1: और गर्मी से भी वो बचे, जैसे पक्षी वगैरह उनको, उसको भी
0: जी
1: सुरक्षा रहती है उससे।
0: जी, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है
1: ये बेड? एक बार जो तैयार करते हैं उसमें कम से कम 65-70 दिन में पूरा खा पी के तैयार हो जाता है वो।
0: अच्छा, इसमें मुख्य रूप से जो कि आप गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रखने के लिए आप कब कब पानी का छिड़काव करते हैं?
1: उसको हर एक दिन पर डे भी छिड़क देते हैं, कभी नई टाइम रहता है तो एक दिन बाद भी छिड़कते हैं, ऐसा हल्का हल्का पानी छिड़क देते हैं।
0: महेश पटेल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो जैविक खाद आप बनाते हैं तो इसके पकने की अवस्था को आप किस प्रकार से देखते हैं?
1: इसमें क्या, केचुए जो खा के एक उस बारीक जो ग्रेन्यूल रहता है उसका वो ऊपर लाते हैं तो उसको हम समेट के अलग कर देते हैं।
0: जी,
1: फिर वो उनका अपना कार्य करते हैं, फिर 6-7 दिन में फिर और ऊपर ले आते हैं तो फिर और समेट के हम साइड में लगा देते हैं।
0: जी,
1: तो इस प्रकार से वो 65-70 दिन में पूरा क्लियर हो जाता है।
0: जी, तो इसमें जो अपने खेत के जो अवशेष रहते हैं उन अवशेषों का भी उपयोग करते हैं?
1: हाँ करते हैं, जैसे तो कुछ फसलों का अवशेष रहता है वो भी उसमें मिक्स कर देते हैं।
0: जी,
1: या तो हम अब तो ऐसा कर रहे हैं कि वो जो फसल की जो अवशेष हैं उसको खेत में ही रोटावेटर से पीस देते हैं
0: जी,
1: ताकि ये जो हमारे केचुओं के अंडे ये जाएंगे बरसात में वो फूटेंगे तो वो जमीन में वहाँ पर उनको खा तो उनका अपना भोजन बनाएंगे वहाँ पर।
0: मतलब खेतों के अवशेष को वहीं पर रोटावेटर चला करके उसको बारीक रूप में बना करके मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है?
1: जी, वहीं मिला देते हैं।
0: महेश पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खरीफ मौसम की जो फसल लगाते हैं मुख्य रूप से हमारे निमाड़ क्षेत्र में, हम देखते हैं कि सोयाबीन, मूंगफली और आजकल मक्का तो ज़्यादा मात्रा में बोते हैं, किंतु ज्वार जो है बहुत कम मात्रा में बोई जाती है, तो इसके लिए जो आप खेत की जो तैयारी करते हैं वो जो बीज की बुआई करते हैं तो बीज की बुआई के पहले जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद आप कब डालते हैं ताकि उस गोबर की खाद का पूरा उपयोग हमारी फसल को मिल सके?
1: हम जब आखिरी जुताई करते हैं गर्मी में
0: जी,
1: उस समय में डाल देते हैं उसको
0: जी,
1: तो ताकि जैसे पानी गिरा
0: जी
1: कि वो मतलब अच्छे तरीके से फसल अपना भोजन ले सकते
0: हैं। कुछ हमारे किसान भाई, पानी का मौसम बन रहा है, पानी आने की संभावना है तो उस पीरियड में ही डाल देते ताकि वो नमी के कारण
1: जमी डालते हैं। हाँ। जब मौसम जून में जब ठंडा मौसम हो जाता है, टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ उसी समय में डालते हैं उसको।
0: ये चीज़ों को हमारे किसान भाइयों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब वातावरण का जो तापमान है थोड़ा सा डाउन हो या कम हो जाए और ऐसा मौसम लगने लगे कि हाँ कुछ दिनों में पानी आने की संभावना है तो उसी पीरियड में हमारे किसान भाइयों को जैविक खाद के रूप में जो भी गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं वो एक तो पक्की खाद का उपयोग करें और उसका समुचित मात्रा में प्रति एकड़ के मान से उसका छिड़काव करें। महेश पटेल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैविक खाद के रूप में और कौन कौन सी खादों का आप उपयोग अपने कृषि कार्य में करते हैं?
1: मेरे पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं जैविक में।
0: जी,
1: एक तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, दूसरा जीव अमृत हो गया
0: जी,
1: और तीसरा मेरे पास जो स्प्रे के लिए बनाते हैं उसको संजीवनी खाद बोलते हैं, वो तैयार करते हैं।
0: महेश पटेल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा जो जीवामृत की आपने बात कही तो इस जीवामृत खाद को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये जीव अमृत तो हमने पहली बार जब बनाया था तो एक जंगल से बरगद के पेड़ के नीचे से मिट्टी लेके आए हम
0: जी,
1: 5-6 किलो
0: जी,
1: और उसमें एक ड्रम में हमने 200 लीटर के ड्रम में डाला उसको
0: जी,
1: उसमें मैंने 5 किलो गुड़ डाला, 5 किलो चने का आटा डाला
0: जी,
1: और उसको प्रति रोज हम घुमाते रहते उसको
0: जी,
1: तो उसके बाद घुमाने के बाद वो 15 दिन बाद फिर उसमें और 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा डालते हैं
0: जी,
1: ताकि बैक्टीरियाओं को जितना भी अपन जैसे भोजन डालते रहेंगे
0: जी,
1: तो उतने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे वो
0: जी,
1: ऐसे वो 2 महीने में

0: हो जाता है
1: जीवामृत 2 महीने में तैयार हो जाता है। और 15 दिन के बाद आप जो आप आटा डालने की जो बात कही है और गुड़ डालने की बात कही है, वो कितनी मात्रा में डालते हैं आप?
0: हम उसको 5-5 किलो डालते रहते हैं। और अब जैसे पहली बार हमने ऐसा बनाया, उसके बाद हमारे पास जो कल्चर रहता है
1: जी जी
0: बस उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम 5-7 लीटर रहने देते हैं
1: जी जी,
0: और उसमें बस फिर और गुड़ आया और बेसन वगैरह डालते रहते हैं और ऐसे कंटिन्यू तैयार।
1: अच्छा, जीवामृत में बनाने का जो घोल बनाते हैं आप, उसको बार बार हिलाना भी पड़ता है क्या? उसको
0: पर डे घुमाना पड़ता है उसको। अपने पास टाइम हो तो 2 टाइम घुमाएं, क्योंकि बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको ऊपर लाएंगे, ऑक्सीजन नीचे नहीं मिलेगा उनको। ऊपर अपन जैसे घुमाएंगे तो ऊपर आएंगे तो ऑक्सीजन जितना मिलेगा उतना वो ज़्यादा बढ़ेंगे वो
1: जी जी।
0: अगर अपन नहीं हिलाएंगे तो वो ऊपर ऊपर परत पे रहेंगे जिंदे, बाकी नीचे मर जाएंगे
1: जी जी। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो जीवामृत आपने तैयार किया है तो इसका उपयोग आप कब अपने खेती योग्य फसलों में करते हैं?
0: सर जैसे हम फसल बोने से पहले प्रति एकड़ में 20 लीटर जीवामृत जैसे फ्लैट पानी दिया तो उसमें हम छिड़क देते हैं
1: जी,
0: या तो फिर जैसे हमारा ड्रिप में पानी चलता है तो हम ड्रिप द्वारा उसमें छोड़ देते हैं
1: जी जी जी।
0: ऐसे प्रति एकड़ में 20 लीटर हमारा जीवामृत जाना चाहिए
1: प्रति एकड़ के मान से। अच्छा, जीवामृत जो आपने तैयार किया है तो चूँकि आप जो ड्रिप की सिंचाई की जो बात कही, ड्रिप सिंचाई में नोजल वगैरह रहते हैं तो उसमें एक तरीके से पूरा छान करके ही इसका उपयोग करना पड़ता है
0: जी? कपड़े से छान के उपयोग करते हैं
1: जी जी। अच्छा, इसमें से ऊपर पानी भी मिलाते हैं जीवामृत में?
0: नहीं नहीं, पूरा प्योर 20 लीटर जाता है वो
1: जी जी। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता फसल को?
0: इसमें बैक्टीरिया जो इसमें लाखों करोड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं
1: जी,
0: तो ये बैक्टीरिया जब ज़मीन में जाएंगे ये बढ़ेंगे, जैसे हानिकारक जो कीट रहते हैं ज़मीन में
1: जी जी,
0: तो वो क्या है कि अपने जो बैक्टीरिया रहते हैं जो जीवामृत के
1: जी,
0: तो वो उनको खा के अपना मतलब
1: एक प्रकार से जो जमीन से लगने वाले जो शत्रु कीट हैं उसको नष्ट करते हैं, और जो हमारे मित्र कीट हैं उसका वो संरक्षण एक प्रकार से करते हैं
0: जी। हाँ जी हाँ, ऐसा।
1: इसी के साथ साथ ये जीवामृत का उपयोग खड़ी फसलों में भी किया जाता है?
0: जी हाँ, जीवामृत आप जितनी बार डालो उतना फायदा है, उससे नुकसान कुछ नहीं है
1: जी जी।
0: तो जो किसान जैसे नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते तो वो 20 लीटर पर्याप्त है, बाकी ज़्यादा भी डाले तो उससे कोई हानि नहीं है, फायदा ही है
1: जी जी जी। महेश पटेल जी, संजीवनी खाद बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का आप उपयोग करते हैं और इसकी बनाने की विधि क्या है, इसके बारे में बताएं?
0: इसमें गोबर लगता है, गौमूत्र लगता है और नीम के पत्ते लगते हैं
1: जी जी जी।
0: तो उसमें हम जैसे 1 एकड़ ज़मीन के लिए बनाते हैं तो उसमें हमको 30 किलो नीम के पत्ते लगते हैं, 30 किलो ताज़ा गोबर लगता है
1: जी,
0: और 15-20 लीटर गौमूत्र लगता है
1: जी जी,
0: और 3 किलो गुड़ लगता है उसमें। ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए 3-4 स्प्रे के लिए इतना तैयार हो जाता है ये मटर
1: जी जी जी। किसको किस प्रकार से बनाते हैं?
0: सबसे पहले हम पत्तों को कट करेंगे, जैसे हमारे पास तो कुट्टी मशीन है तो हम उसे कुट्टी मशीन में लगा के उसको पूरा कट कर देते हैं पत्तों को
1: जी जी जी।
0: उसके बाद वो 200 लीटर ड्रम में ये पत्ते डाल देते हैं
1: जी,
0: गोबर डाल देते हैं और गौमूत्र डाल देते हैं
1: जी जी।
0: उसके बाद पानी से उसको भर देते हैं
1: जी,
0: और उसको पूरा मिला जुला के फिर उसमें 3 किलो गुड़ डाल देते हैं
1: जी जी। और उसको कपड़े से वगैरह से ढक करके रखते हैं पूरा?
0: हाँ, उसको इसको पर धूप में रखना पड़ता है,
1: इसको धूप में रखना
0: हाँ, और जीवामृत छाँव में बनाना पड़ता है।
1: जीवामृत को छाँव में बनाते हैं
0: जी हाँ।
1: और ये जो
0: संजीवनी खाद
1: जो है
0: इसको धूप में रखना पड़ता है,
1: इसको धूप में रखना, इसको धूप में रखने का क्या कारण है?
0: इसमें वो अंधेरी माइक्रोब्स जो रहते हैं वो उनको धूप में रखना, जब भी वो बढ़ते हैं
1: जी,
0: छाँव में नहीं बढ़ेंगे वो
1: जी जी जी। संजीवनी खाद का जो उपयोग है महेश पटेल जी, आप कब करते हैं अपनी खेतों में?
0: जैसे हमारी फसल उग के बाहर हुई 10-12 दिन के बाद पहला स्प्रे हम उसका लगा देते हैं
1: जी जी जी जी। मतलब जमीन से उग करके जैसे बाहर आती है
0: जी,
1: तो उस समय आप इसका स्प्रे करते हैं? प्रति एकड़ के मान से कितना स्प्रे करते हैं आप?
0: इसमें हम कम से कम ये मान के चलो छोटी फसल रहती है तो जब तो हमको 100 लीटर पानी में हो जाता है काम
1: जी जी जी।
0: जब बड़ी फसल होती है फिर उसमें 200 लीटर जाता है।
1: तो संजीवनी खाद प्योरली इसी का स्प्रे करते कि पानी में घोल करके इसका?
0: इसकी मैं विधि बताता हूँ
1: जी जी जी।
0: जैसे मैंने 200 लीटर का ड्रम जो तैयार है मेरे पास
1: जी जी,
0: पहला स्प्रे लगाएंगे तो इसमें से हम 50 लीटर निकालेंगे
1: जी,
0: और दूसरे 200 लीटर ड्रम में इसको डालेंगे।
1: अच्छा।
0: और उसको पूरा पानी से भर देंगे
1: जी,
0: और उसको पानी से भरने के बाद जैसे आज कल हमको स्प्रे करना है तो आज उसको निकाल के उसको डंडे से घुमा करा के कंप्लीट रख देंगे
1: जी,
0: और रात भर में जो भी रॉ मटेरियल है उसका नीचे बैठ जाएगा
1: जी जी,
0: और कुछ ऊपर आएगा
1: जी जी।
0: तो

0: ऊपर हम छन्नी से निकाल के बाहर कर देते हैं
1: हाँ।
0: और फिर उसको सुबह सुबह पूरा पानी ऐसे जैसे अपना कुप्पा वगैरह लिया उससे मग से निकाल लेंगे
1: जी,
0: और कपड़े से छान के उसको डायरेक्ट ही स्प्रे करते हैं उसका।
1: तो संजीवनी खाद को यदि आप बनाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 200 लीटर पानी के ड्रम में 50 लीटर इस संजीवनी खाद को डाल करके उसका पहले घोल तैयार करें, और घोल तैयार करके उसको प्रॉपरली हिला करके जो नीचे का जो है रॉ मटेरियल उसको बैठने दें, और ऊपर का जो घोल बना है ऊपर का उसका उपयोग आप स्प्रे के रूप में आप उसको करना चाहिए।
0: जी हाँ, वो तो तरल पूरा हो जाता है
1: जी,
0: तो कपड़े से छानने में दिक्कत नहीं आती है
1: जी जी। अच्छा, ये संजीवनी खाद है, इसका स्प्रे हर फसल के लिए अलग अलग करते हैं कि एक समान करते हैं?
0: नहीं, समान सर, हर फसल एक ही समान। कोई इसमें
1: कितनी मात्रा रखते हैं आप?
0: ये तो अपनी फसल पे निर्भर करता है, छोटी बड़ी फसल
1: जी जी जी।
0: इसमें कोई वो ज़्यादा भी चला जाए कम भी चला जाए तो इससे कोई हानि नहीं है फसल।
1: अच्छा, इस क्रांतिक अवस्थाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ये संजीवनी खाद डालने के समय?
0: नहीं, उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता, क्योंकि अपनी फसल जब छोटी बाल अवस्था में रहती है तो वैसे ही मतलब अपना स्प्रे कम पानी जाता है उसमें
1: जी जी,
0: क्यों अपना इतना पानी तो लगता नहीं उसमें
1: जी जी।
0: जैसे अपन ने 200 लीटर का कभी बना भी दिया
1: जी जी,
0: तो नहीं 200 लीटर उसमें से कभी अपन का 50 लीटर भी यूज़ हुआ
1: जी,
0: तो 50 लीटर वो जो बचा हुआ वो अगले स्प्रे में अपन ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है
1: जी जी जी जी जी। महेश पटेल जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि एक प्रकार से आप तो जैविक खाद के रूप में गोबर के खाद का उपयोग भी अपने कृषि कार्य में कर रहे हैं, और जीवामृत और संजीवनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। महेश पटेल जी, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
1: भाई भौणी, अभी हमने स्थल रिकॉर्डिंग आधारित भेंटवार्ता सुनी, जे कोई शहत हो कृषि में जैविक खाद का निर्माण और उपयोग इना विषय पर ग्राम अहमदपुर खैगांव का प्रगतिशील कृषक भाई महेश पटेल से बात करी रहा था देवेश मांडले। ना अब बारी से आज का कृषि समाचार की। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा लिया गया निर्णय के अनुसार खरीफ बुआई का पहला आज से आगामी 10 दिन तक हर विकासखंड का गाँव नम कृषि रथ का माध्यम से हमारे किसान भविन्नक कृषि का आधुनिक तरीका न से परिचित कराया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड को महत्व कृषि विभाग की विभिन्न योजना न के बारे में बताया जाएगा। साथ ही पराली ख जलाने के बजाय ओका सुरक्षित रूप में निष्पादन की तकनीक न जैविक न प्राकृतिक खेती ख अपनाने का आसान तरीका बताया जाएगा। भाई बहनों, ये तो था आज का हमारा कृषि समाचार। न आज अमावस्या का कारण खंडवा कृषि उपज मंडी में उपज की आवक बंद रही। न आज का तापमान की बात करा तो आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर हो, न सूर्यास्त शाम 6:55 पर। न तापमान की बात करा तो भाई बहनों, आज को अधिकतम तापमान रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस, न रात को न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनों, आओ एक निमाड़ी लोकगीत सुना जिखा गाए हो सौदान सिंह सोलंकी ने उनका साथी नाना।

भाई बहनों, अभी हमने सौदान सिंह सोलंकी ने उनका साथी को गायो ने माड़ी लोकगीत सुनियो न। अब बारी छे आज का प्रश्न को उत्तर बताने की। तो हमने कार्यक्रम का शुरू में आपसे एक प्रश्न करो थो कि ग्रीष्मकालीन भिंडी फसल में तना न फल छेदक कीट न को नियंत्रण हम कसा करा। तो एक उत्तर छे, खेत में जगह जगह फेरोमेन ट्रेप लगाई करी सकान या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 80 ग्राम मात्रा ख 200 लीटर पानी में घोल बने कर प्रति एकड़ का मानसी छिड़काव करना चाहिए। भाई भोनी, ये तो थो आज का प्रश्न को उत्तर न। अब आज का इना कार्यक्रम को समय भी पूरा हो रो। तो अपना भाई देवेश खदेव आज्ञा, राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: FM 101.2 MHz पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली से किया जाएगा।
1: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
2: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

0: पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है, लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती हैं, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी
1: मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो।
0: मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे

0: मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी, ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी, मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो, मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी, तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा, बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, बोलना।
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में

ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सस्मणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम। हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। हाँ, इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

0: सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में।
1: सुनो कहानी।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं, मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। अब आपको सुनवा रहे हैं 80 फिल्म का गाना मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल, रोचक कोहली का संगीत।

असी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहित चौहान, परंपरा टंडन और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। फिल्म है बाजीराव मस्तानी, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के स्वर हैं। गीत और संगीत सिद्धार्थ गरिमा के।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत था। पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल हैं। फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों।

और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

0: अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात

0: की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष

0: से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना सचिन देवबर्मन का संगीत।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबल

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

0: नजरों की जरा सी इनायत हो जाए तो कयामत के बादल बिजलियां गिराने को आतुर हो जाएंगे। जरा सा एक एहसास दिल को होने लगा है, वो मेरा है, मेरा होने लगा है।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

जरा सी उनके आने की खबर इन फिजाओं में सर्द हवाओं ने इस तरह से घोल दी कि महक उठी है दरों और दीवारें। मन के आंगन में किसी के आने की आहट का वो इंतजार होने लगा है।

अंतराल के बाद छाया गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हम

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दू, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं